ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026 सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

0: दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। आप सुनेंगे वंदनवार, जिसे विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से रिले किया जाएगा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 203। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 7वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। सुनिए इस कार्यक्रम का भाग 30। लेखन है मिलिंद सबनीस का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदा बहार नगमे। 3 बजे आज सुनिए हेलो सहेली। 7:00 कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। कहानी है रिश्ते। लेखन है विधि जैन का। संपादन है काजल भद्रगी का। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:30 पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी एक दिन का प्यार। लेखन है V.M. आनंद का। निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है ज्योति गौर का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। कल आपने सुना था राग दरबारी, आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: संगीत सरिता के श्रृंखला में आपका एक और बार स्वागत है। आजकल मैं बता रही हूँ हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल की कुछ कृतियां, जिनमें उत्तर और दक्षिण का संगम है। स्वाति तिरुनाल थे दक्षिण के केरला प्रांत के, और इन कृतियों को गाने की विधि कर्नाटक पद्धति से जुड़ी हुई है, लेकिन साहित्य है हिंदी में और राग हैं हिंदुस्तानी पद्धति के। मैं राग वृंदावनी सारंग, दरबारी और धनाश्री में कृतियां पेश कर चुकी हूं, तो लीजिए आज सुनाती हूं भैरवी राग में एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति तिरुनाल के बारे में दो चार शब्द और भी कह दूं। स्वाति तिरुनाल और संत त्यागराजा, मुत्तस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाद्यकार थे। स्वाति तिरुनाल तिरुवांकूर प्रांत के महाराजा थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने त्रिमूर्ति वाद्यकारों का। कहा जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें स्वाति तिरुनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति तिरुनाल के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास और पंजाब के सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तक की बात। स्वाति तिरुनाल ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी, खास करके मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति तिरुनाल ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति,

जो कहरवा ताल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूंगी कि भैरवी जो दक्षिण में गाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी गाते हैं उसमें काफी ठाट के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है, तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: आलाप का ये गीत राग भैरवी पर आधारित था। आवाजें थी लता मंगेशकर और दिलराज कौर की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक विको वज्रदंती। विको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: विको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
2: विको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: मजेदार नहीं, असरदार।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट फिल्म के इस गाने के साथ, केएल साइगल की आवाज में आरसी बुराल की बोल।

अच्छा, अब यही कहानी गाकर तुम्हें सुनाता हूँ।

0: अच्छा बच्चों, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक आपस में दोनों जी भर कर खेले। दोनों ने खाए मिलजुल कर सेब, अनार और केले। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें वो शहजादी मिल जाए तो उसके साथ खेलोगे? वो बच्चों को बड़ी उम्दा उम्दा चीजें खिलाती है। कहो हाँ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज पृथ्वीराज कपूर की याद का दिन है। अभी आपने उनके द्वारा अभिनीत फिल्म रुस्तम सौराब का गाना सुना। इस गाने को गाया था सुरैया ने, कमर जलालाबादी के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती। इस फिल्म से ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से बनाई गाना बोल थे प्रदीप के।
1: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शमशाद बेगम और मुबारक बेगम की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना योगेश के बोल रॉबिन मुखर्जी का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

आप सुन रहे थे फ्लाइंग सर्कस फिल्म से ये गाना, कमल बुरात की आवाज में, योगेश के बोल रॉबिन मुखर्जी का संगीत। आज गीतकार योगेश की याद का दिन है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन गाने लिखे। अगला गाना सजा है गीतकार योगेश की बोलों से, टार्जन और डेलिले फिल्म से, महेंद्र कपूर और कमल बुराट की आवाजों में, रॉबिन बैनर्जी के बोल।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे एक रात फिल्म से ये गाना, योगेश के बोल उषा खन्ना का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, जिसे विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बातों बातों में इस फिल्म के गाने के साथ, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, योगेश के बोल राजेश रोशन का संगीत।

কি বলো যে गीतकार योगेश को याद कर रहे हैं छोटी सी बात इस फिल्म के इस गाने के साथ। ये सुदास की आवाज, सलिल चौधरी के बोल।

0: येसुदास और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गाना, योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

सखी रॉबिन फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में योगेश के बोल रॉबिन बनर्जी का संगीत। इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं।
1: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी। और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
5: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26

0: पुलिस निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है केरल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे ये 10 वर्षों बाद केरल में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विषा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है गिरिबाला त्विषा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विषा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है अभिनव गोयल आकाशवाणी भोपाल
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगिरी में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की

0: पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से। बोल है कश्मीरी के और संगीत ओपी नैयर का। इस गीत को गाया है आशा भोसले और मीनू ने।

आई श्रोता हूँ आपको सुनवाते हैं शोर फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों ने। बोल है इंद्रजीत सिंह तुलसी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं कैफ भोपाली का लिखा यह गीत। संगीत है गुलाम मोहम्मद का। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म है पाकीजा।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। साल 2026 का 149वां अंक लेकर हम हाजिर हैं। इस समय आपसे मुखातिब हैं गुलनास खान और
1: स्वाति बंसाली।
0: स्वीकार करें हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: ट्यून हो चुका है इस वक्त आपके रेडियो सेट पे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, और इस वक्त नमस्कार की पूरी क्रिएटिव टीम आज यानी कि 29 मई का अंक लेकर आपके लिए हाजिर है। इस वक्त ट्रांसमीटर पर मौजूद है प्रकाश पवार और सी एल सोनी। कंट्रोल रूम में इस वक्त तकनीकी सहयोग के लिए मौजूद हैं प्रवीण कुमार। एचपीडी पे अनाउंसर ऑन ड्यूटी पूजा जोशी, और वहीं एफएम के कंसोल से साथ दे रहे हैं अनाउंसर ऑन ड्यूटी कल्याण विश्नोई।
0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में कोऑर्डिनेशन किया है राजेश लामरोड ने। इस प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं संजय व्यास। पूरी टीम के साथ आवाज और जज्बात के साथ बहुत सारी जानकारी और सुरीले गीतों के साथ आपसे मुखातिब गुलनास खान और
1: स्वाति बंसाली, और बहुत सारी बातें आज आपसे शेयर करेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: जिंदगी का एक नया दिन बड़ा ही खूबसूरत और उजला दिन, और एक सवाल कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अगर इंसान चाहे तो खूबसूरती उसे आंखों से नजर आ सकती है, अपनी जिंदगी को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी जिंदगी में हर अच्छाई को देखें, बुराई की तरफ देखकर एक सीख ले और आगे बढ़ जाएं, जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी।
1: बिल्कुल, और ये खूबसूरती जिंदगी के जितने भी रंग हैं उनमें भी तो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, हमें महसूस भी होते हैं। सोचिए ना कि जिंदगी में अगर ये इतने अलग अलग जो गम और खुशी के रंग हैं ये ना बिखरे होते तो जिंदगी कितनी नीरस हो जाती। तो बिल्कुल, और हम भी अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं तो इन सारे रंगों को एक साथ लेकर ही तो चलते हैं। आज याद आ रही है कुछ पंक्तियां जो गुलजार साहब ने लिखी थी कि उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। बिल्कुल, ये वक्त है जो गुजरता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, जिंदगी में सभी को साथ लेकर चलने की सीख देता जाता है। बिल्कुल, बातें शेयर कर रहे हैं आपसे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, आप बने रहिए हमारे साथ।

0: जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे रंग होते हैं ज़िंदगी में, और जब ज़िंदगी से आशिकी का रंग चढ़ता है तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। सुबह होती है तो लगता है कि ये जो ज़िंदगी की रौनकें हैं ये शोहरत से है, दौलत से हैं, लेकिन जब शाम ढले घर लौटते हैं तो लगता है सुकून भरी ज़िंदगी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ा ख़जाना है। बस ज़िंदगी में सुकून ढूंढते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर कोई व्यक्ति करीब आकर हमसे जब हमारे हाल दिल पूछता है तो भी दिल बड़ा सुकून से भर जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे अभी कुछ देर पहले आप मेरा हाल पूछ रही थी कि तुम आराम से तो आई हो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सोचिए ना, जब कोई इतना सा अपनापन दिखा देता है तो कितना गहरा जो सुकून है वो दिल में पहुंचता है कि हाँ, इस भीड़ भरी दुनिया में, इस पूरी लोगों की जो ये है दुनिया, इसमें कोई अपना है जो हमारे लिए सोचता है। अगर सिर्फ हम अपने अपने लिए सोचते रहें तो कितने स्वार्थी हो जाएंगे ना।
0: तभी तो कहते हैं ना स्वाति, कि दुख के दिनों में किसी का हाथ राहत का साथ दे जाता है।
1: बिल्कुल, और अगर कोई एक ऐसा कंधा मिल जाए जिस पे सर रख के दिल में सुकून पहुंचे तो फिर क्या ही बात है।
0: जी, आंखों में देखकर भी सुकून लिया जा सकता है, कंधे पर सर रखने की नौबत बाद में आए।
1: बिल्कुल, और एक सुकून हम अपने श्रोताओं तक भी पहुंचा सकते हैं, उनको प्यारे प्यारे सुरीले गाने सुनाकर।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बात है, क्या खूबसूरत सी बात आपने कही है। और बिल्कुल अब ये जो चाहते हैं कि इस ओर इशारा कर रही हैं कि आपको सुनाया जाए एक खूबसूरत सा गीत ताकि दिल को पहुंचे थोड़ी सी राहत।

0: बड़ा ही खूबसूरत गीत हमने श्रोताओं को सुनवाया। उसमें एक लाइन थी जिसमें कहा गया था कि मरहम दिल पे लगाया। बस श्रोताओं, कुछ इस तरह से सुकून जिंदगी हमने हासिल कर ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से मोहब्बत कर ली।
1: क्या बात है। और ये जब माफ़ी होती है ना, ये इतने ज़्यादा जख्मों को भर देती है कि कोशिश तो वैसे ये करनी चाहिए कि हम जाने या अनजाने भी किसी के दिल को ना दुखाएं, लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, और अगर हो जाए तो स्वीकार करने में क्या शर्म है। स्वीकार कीजिए, माफ़ी मांगिए, तो देखिए ना जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, जीने में सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम मन में दुराव रखते हैं, छिपाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उलझने बढ़ती ही तो जाती हैं।
0: भाई, मोहब्बत में मुस्कुराहट की अपनी कीमत होती है, तो कभी कभी रुसवाई से भी सामना हो जाता है। लेकिन बस यही है कि जहाँ पर रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहे ना, तो वहाँ पर ताजगी भी बनी रहती है। बस एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल जाता है कि तुम मुझसे इसी तरह से रूठा करो, मैं इसी तरह से तुम्हें मनाती रहूँ, मनाता रहूँ। बस जिंदगी इसी तरह से चलती रहे और ये कार्यक्रम भी इसी तरह से चलता रहे। एक और गीत अपने श्रोताओं की नज़र करते हैं।

0: तेरे बिना ना हो जीना बस ये दुआएं मांग लूं। बिल्कुल हम भी तो यही दुआएं मांगते हैं कि आपका और हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे। और ये जो साथ है ये हर रोज नमस्कार में हम जब नई जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं तो इस साथ में भी तो ताजगी आ जाती है। याद आती है वो लाइनें जहां कहा गया कि जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए पर बिखरे पन्नों को तो पहले प्यार से चिपकाइए। बिल्कुल, तो जब बिखरे पन्ने चिपकने लगते हैं, एक साथ होने लगते हैं, तो जिंदगी की नई खूबसूरत किताब सामने आने लगती है।
1: जी, और उसमें नाम लिखा होता है मोहब्बत, और कहते भी है ना कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है। गौर कीजिएगा, एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, बिखरे तो जमाना है।

0: श्रोताओं इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और नमस्कार कार्यक्रम में लौटेंगे ठीक 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं सवेरे के 9 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो कि हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चार जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांव तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR

0: न्यूज और फेसबुक एआईआर न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झाबर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
1: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देवस्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुँचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
2: धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे ये चांद का घर लगता है। चांद महराब पे सोई हुई ये काहिश है, बेवजू आंखें हैं पड़ते हुए डर लगता है।
0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में लानी ईंधन में खप राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ हाजिर हैं गुलनाज खान और
1: स्वाति वंसाली, और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। सबसे पहले जानते हैं इतिहास के आईने में दिखाई कैसे देता है आज का दिन।
0: साल 1658, आगरा के निकट सामुगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था आज के दिन। ये लड़ाई मुगल साम्राज्य की दिशा बदलने वाली घटनाओं में गिनी जाती है। श्रोताओं, 1851 में अश्वेत महिला अधिकार कार्यकर्ता सुजनेट ट्रुथ ने अपना प्रसिद्ध भाषण आज ही के दिन दिया था, क्या मैं महिला नहीं हूँ। एक्रॉन महिला अधिकार सम्मेलन में उन्होंने ये भाषण दिया था। ट्रुथ पहली अश्वेत महिला थी जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अश्वेत महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों की मांग उठाई थी। उन्होंने अपना जीवन समान अधिकारों के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उन्हें 19वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली अश्वेत महिला वक्ताओं में माना जाता है। ।1885 में जूता बनाने की मशीन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था आज के दिन। इस लास्टिंग मशीन को जॉन मेडजेलिगर ने विकसित किया था और अमेरिका के लीन शहर में अपने जूता बनाने वाले आविष्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। मेडजेलिगर ने जिस मशीन का आविष्कार किया था वो बड़े पैमाने पर जूते बना सकती थी। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने तकरीबन 75 जोड़ी जूते बनाए जो हाथ से काम करने वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी।
1: सन 1990, दिन आज ही का यानी कि 29 मई का, आज ही का वो दिन था जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे बोरिस येल्सिन। तब ये सोवियत संघ देशों का समूह था, लेकिन बाद में इसका विघटन हो गया और सभी देश अलग अलग हो गए थे।
0: सन 1922 में आज ही के दिन इक्वाडोर को आजादी मिली थी। 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। बर्फ से ढकी ऊंची और दुर्गम चोटियों पर फतेह हासिल की थी। इस उपलब्धि को याद रखने के लिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ।1968 में भारत के दिग्गज पहलवान दारा सिंह ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अपने नाम की थी आज ही के दिन। ।1970 में यूनाइटेड रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था आज ही के दिन।
1: याद आता है आज ही का दिन जब सन 1999 में नाइजीरिया में नागरिक सत्ता की स्थापना हुई थी। और बिल्कुल जब नागरिक सत्ता की स्थापना हुई तो ये दिन नाइजीरिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि जनता जो है वो उसको एक प्रभुत्व मिला था वहाँ के नागरिक प्रशासन में।
0: जी, 1967 से सैन्य शासन के बाद सत्ता लोकतांत्रिक सरकार को सौंपी गई थी और एक तरह से ये नाइजीरिया में लोकतंत्र की वापसी थी। 1999 में डिस्कवरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ा था। ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान था। ये स्पेस शटल कार्यक्रम का दूसरा ISS मिशन था।
1: साल 2007 जब जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स घोषित हुई थी, दिन आज ही का था यानी कि 29 मई का। आज ही का वो दिन था साल 2008

0: में जब नेपाली सरकार ने राजतंत्र का अंत किया था और घोषणा की थी गणतंत्र की और तब शाही महलों सहित देश के सभी भागों में जो राजतंत्र के चिन्ह थे वो सभी हटा दिए गए और नेपाल के नए राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। दिन आज ही का था यानी कि 29 मई का।
1: जी हां श्रोतो, नेपाल की संविधान सभा ने 28 मई को देश को आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। इसके साथ ही वहां पर 240 वर्ष पुरानी राजशाही समाप्त हुई थी। सन 2010 में भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने चीन के हेनान प्रांत के लुओयांग में पहली सदी के प्राचीन श्वेताश्व व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में बने पहले भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण किया था आज के दिन।
0: और श्रोताओं, इतिहास के आईने में नजर डालने के बाद अब सुनते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण एवं जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के लिए 30 मई को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। अतः जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 30 मई को होने वाली जलापूर्ति 31 मई को और 31 मई को होने वाली जलापूर्ति 1 जून को की जाएगी। झालामंड और तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े हुए क्षेत्र, सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों और पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 30 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 31 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 1 जून को और 1 जून को की जाने वाली जलापूर्ति 2 जून को की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार कार्यक्रम में भी अगली कड़ी जोड़ते हैं। दिन विशेष की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के शांति अभियानों में सेवारत पुरुषों और महिलाओं के अदम्य साहस, समर्पण और उन्हें सम्मानित करने और शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये दिन है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के महत्व को उजागर करना भी है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा देने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं के साहस और समर्पण को श्रद्धांजलि देना है, सम्मानित करना है और उन शहीदों को याद करना जिन्होंने ब्लू हेलमेट पहनकर दुनिया के संघर्षगत इलाकों में शांति बहाली के काम किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर सन 2002 में एक प्रस्ताव पारित कर 29 मई को इस खास दिवस के रूप में नामित किया था। श्रोताओं, 29 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1948 में 29 मई को अरब इजराइल युद्ध के बाद युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति रक्षा मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की शुरुआत फिलिस्तीन में हुई थी। 11 दिसंबर सन 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प द्वारा इसे नामित किया गया था। यूक्रेनी शांति रक्षक संघ और यूक्रेन सरकार के संयुक्त राष्ट्र महासभा से आधिकारिक अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस दिन को पहली बार आधिकारिक तौर पर सन 2003 में मनाया गया था। भारत की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सबसे बड़े और सबसे पुराने सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है। भारतीय सैनिकों ने अब तक दुनिया भर में कई जटिल मिशनों में हिस्सा लिया है। इस योगदान के दौरान तकरीबन 160 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने वैश्विक शांति की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इस दिन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भारतीय सेना के अधिकारी संयुक्त राष्ट्र और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस साल का थीम है शांति स्थापना का भविष्य।
1: बिल्कुल, और न्यूयॉर्क में भी आज ही के दिन विशेष समारोह भी आयोजित किया जाता है जहां पर जितने भी बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने शांति स्थापना में अपने प्राणों की आहुति दी है उन्हें मरणोपरांत डैग हैमरशॉट मेडल से सम्मानित किया जाता है। और बिल्कुल, जब शांति की बात आती है तो स्थिरता की भी बात आती है क्योंकि शांति और स्थिरता का जो सबसे प्रमुख प्रतीक विश्व में प्रकृति ने दिया है हमें वो है हिमालय की पर्वतमाला और इस हिमालय पर्वतमाला का सरताज है माउंट एवरेस्ट। इसे कहा जाता है सगरमाथा भी नेपाल में और वहीं तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है और आज का दिन खास तौर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में क्योंकि आज ही का वो दिन था जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये दोनों ही दुनिया के जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वहां पर पहली बार सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की थी। और जब एडमंड हिलेरी का निधन हुआ तो तब नेपाल सरकार ने साल 2008 से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। खासतौर पर साहस और सहन शक्ति का सम्मान करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, विशेष रूप से नेपाल के काठमांडू और एवरेस्ट के क्षेत्रों में वह और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और दुनिया की जो ये सबसे दुर्गम चढ़ाई है इसमें मनुष्य के विजय के साहस की और इस दुर्गम स्थानों को जो फतेह करने की उसकी जिज्ञासा है उस साहस का सम्मान करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। तो आज का दिन हिमालय पर्वतमाला के नाम और माउंट एवरेस्ट के नाम।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी कई बार ऐसे होता है कि एक साथ हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं और नमस्कार कार्यक्रम में बहुत सारी बातों के बीच एक काम की बात।
2: बिल्कुल, और ये जो खास काम की बात है हमारी, ये खास तौर पर जुड़ी हुई है कचरा संग्रहण से। किस तरह से हम जन भागीदारी द्वारा कचरा संग्रहण में सहयोग कर सकते हैं और अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, बस इसी की आज हम बात कर रहे हैं। और ये हम सब के लिए बहुत काम की बात है क्योंकि एक स्थायी और स्वच्छ वातावरण की रीढ़ जो है वो ये जन भागीदारी ही बनती है। नागरिकों का सक्रिय सहयोग अगर मिलता है और जागरूकता होती है तभी सफाई अभियान भी सफल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ निकाय और प्रशासन जो है अगर कचरा उठाने का काम करे और जन सहयोग ना मिले तो काम कुछ अधूरा सा रहेगा। ताली भी तो दोनों हाथ से ही बजती है ना, प्रशासन अपना काम करेगा, जनता अपना काम करेगी, तभी कचरे का सही तरीके से निष्पादन भी हो सकता है और प्रबंधन भी हो सकता है। तो जनता को क्या करना है, कचरे को सबसे पहले घर पे ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखें। बहुत छोटा सा काम है, सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता से बहुत आसानी से ही हो सकता है। और एक काम और, थर्मोकोल, पॉलिथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इनका उपयोग करना है, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश ये करें कि जब भी बाहर जाएं अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाएं। और हाँ, डोर टू डोर जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनके सुचारू संचालन के लिए जो उपयोगकर्ता शुल्क है उसका समय समय पर भुगतान करते रहे ना, क्या दिक्कत है, वो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आप भी सही समय पर उनके शुल्क का भुगतान करें। और रसोई का जो गीला कचरा है घर पे ही उससे खाद बना लें ताकि कचरा गाड़ी पे भी भार कम हो जाए। और अगर कोई भी आपके आसपास कचरा डाल रहा है या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जला रहा है तो फिर आप गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन को सूचित भी कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज बहुत आसानी से निभा सकते हैं। और साथ ही साथ 3R के सिद्धांत को अपनाएं, यानी कि रिड्यूस करें कचरे को, रीयूज करें।

0: और रीसाइकल करें बस तो और कोई भी अगर आपको शिकायतें हैं या सुविधाएं को जानना है तो आप नागरिक स्वच्छ भारत मिशन शहरी पोर्टल का उपयोग भी कर सकते हैं
1: जी हाँ श्रोताओं देश में बढ़ते कचरा संकट को देखते हुए ठोस कदम उठाने होंगे सरकार की नीति के साथ साथ जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने का समय आ गया है इस संदर्भ में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की गई है इसमें केंद्र सरकार के शीर्ष सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे इसमें जिला स्तर पर स्पेशल सेल बनाकर निगरानी रखे जाने की भी योजना है और श्रोताओं नए नियम के अनुसार घर में गीला और सूखा कचरा साथ ही विशेष श्रेणी का कचरा रखने के लिए अलग अलग पात्र रखना अनिवार्य होगा खुले में कचरा डालने वाले पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें खत्म किया जाएगा सरकार प्रदेश के हर शहर के लिए अलग अलग ठोस कचरा प्रबंधन निस्तारण की नई नीति और रणनीति तैयार करे उसमें हमें अपनी ओर से भी कदम उठाने होंगे
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
3: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
5: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने जोधपुर मोबाइल 9829027065
6: तीनों कॉलेज में
7: डोंट वरी
6: फीस तो देखो
8: क्या हाल है क्या हुआ
7: फीस की टेंशन
8: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
9: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल
8: वो कहाँ है
9: मिठाई
10: आरबीआई कहता है
11: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मन दौड़ने लगता है उन बातों के पीछे जो हमें ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ाती है। बहुत सारी बातें काम की होती हैं लेकिन उसमें भी कुछ बातें ख़ास होती हैं।
1: और आज की जो ख़ास बात है वो ये है कि कल जो हमारे अपने शहर में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया वो किस तरह से मनाया गया। पूरी दुनिया भर में अमन और शांति की याद दिलाने का ये त्यौहार था, पूरी अकीदत और खुशी के साथ मनाया गया था, त्याग और बलिदान का ये त्यौहार था। कल बड़ी संख्या में सुबह लोगों ने जालोरी गेट स्थित ईदगाह में नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी यहाँ पहुँचे और लोगों को ईद की बधाई दी और साथ ही साथ

0: जोधपुर शहर की जितनी भी छोटी बड़ी मस्जिदें थी वहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगे। और सोचिए ना, जब एक दूसरे के गले लगते हैं तो भाईचारा, अमन और शांति तो कायम होती ही है। वैसे ये त्यौहार कई मायनों में खास है और एक खास संदेश भी देता है। हर इंसान अपने जान माल को दूसरों की अमानत समझे और उसकी रक्षा के लिए कोई भी त्याग या बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहे। ईद उल जुहा यानी कि अजगा या जुहा का अर्थ है सुबह का वक्त, सूरज चढ़ने से सूरज ढलने के बीच का समय, और रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के 70 दिनों बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। बेटे की कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम द्वारा दी गई थी अल्लाह के हुक्मों पर, इस तत्पर हो जाने की याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। सोचिए ना, आप जब पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भगवान को, अल्लाह को समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह के सवाल मन में नहीं रहते, तो बस यही त्याग और बलिदान मनाने के लिए शहर में, हमारे अपने जोधपुर में अमन और शांति के साथ यह त्यौहार मनाया गया।
1: जी हाँ श्रोताओं, ईद अरबी जुबान का शब्द है जिसका माने होता है खुशी, और अजहा का मतलब होता है कुर्बानी। तो खुशी से की गई कुर्बानी का ये पर्व हमने मनाया, और साथ ही साथ मारवाड़ का कुंभ कही जाने वाली 7 दिवसीय भोगी शैल परिक्रमा यात्रा कल भक्ति, उत्साह और आस्था के वातावरण के बीच बैरी गंगा पहुंची, और ये यात्रा अभी जारी है अपने अगले पड़ाव की ओर। आस्था का संगम हमें देखने को मिल रहा है, और गंगा जमुनी संस्कृति जो हमारी भारत की है उसमें अगर बशीर बद्र साहब की कलम से अगर हम देखें तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो भाईचारा है, ये प्यार मोहब्बत का पौधा सदा हरा रहे।

श्रोताओं, आज सारा साहित्य जगत, कला जगत, सांस्कृतिक जगत, कलमी दुनिया उदास मन से, अश्रुपूर्ण आंखों से ये जो कलाम लिखा, जिन्होंने कहा कि दुआ करें ये चेहरा हमेशा खिला खिला ही रहे, लेकिन आज उनके तमाम प्रशंसकों के चेहरे पर आंसू हैं और आज हम सभी का दिल ये दुआ कर रहा है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब की रूह को सुकून मिले। कल एक खबर ने साहित्य जगत में शोक की लहर फैला दी। उर्दू अदब के शानदार शायर डॉक्टर सैयद मोहम्मद बशीर बद्र साहब इस फ़ानी दुनिया में अपने कलाम, अपनी यादों का तोहफा

0: देकर रुखसत हो गए।
1: वो आवाज खामोश हो गई जिन्होंने जिंदगी के जितने भी रंग हैं, मोहब्बत, तन्हाई, रिश्ते, टूटन, उम्मीद, सभी को सादगी से कागज पर उतार दिया। और वो सादगी इतनी कि जिसमें जिंदगी का फलसफा बहुत खूबसूरती से बयान हो गया। और सिर्फ फलसफा ही नहीं, जिंदगी की तकलीफों को भी उन्होंने कुछ इतनी खूबसूरती से बयान किया कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सोचिए ना, उनकी शायरी में कितनी अजीब सी नरमी थी, धीरे से जिंदगी समझा रहे थे और हमें समझ में भी आ रही थी कि महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।
0: बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और हकीकत को बयां किया है। बड़ी ही सादगी से, दिल से निकली हुई आवाज़ दिल तक पहुंची। और ये आवाज़ और ये अशआर महफिलों में गूंजते रहे तो तन्हाई में भी सुनने वालों के साथ को निभाते रहे। एक जगह लिखते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। श्रोताओं, बस दो मिसरों में पूरे दौर की बदलती तहजीब बयां कर दी। और जाते जाते न जाने कितनी बातें लिख गए और गज़लों में मोहब्बत और ज़िंदगी को उन्होंने नई आवाज़ दी थी, अल्फाजों को एहसास की सबसे खूबसूरत शक्ल दी थी। एक जगह लिखते हैं कि सर से पाँ तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होकर भी छूते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है।
1: और बिल्कुल, और आज भी भले ही उनका शरीर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लिखा हुआ ये शेर आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देता है जब वो ये लिखते हैं कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो आज उनका जो रूह है वो भी उसी मील के पत्थर को ढूंढने चली गई है जो कभी उनकी आँखों ने देखा ही नहीं। सिर्फ मंजिल पे नज़र रखते रखते वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादों को, अपनी कृतियों को हम सब के बीच में छोड़ गए जो उन्हें आज भी हमारे दिलों में अमर किए हुए हैं।
0: और उन्हीं की यादों के ज़रिए उन्हीं के कलाम को हम याद करते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और अगर इसमें अपने जज्बात जोड़ें तो अब तो यही होगा कि कौन कहेगा कि मुलाकात नहीं होती, मिलेंगे तो रोज़ ही, मगर बशीर साहब बात नहीं होगी।

0: सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सप्ताह विशेष में आज हम बात करेंगे, एक किताब का जिक्र करेंगे, हॉरर साहित्य के बेताज बादशाह स्टीफन किंग के मशहूर कृति द शाइनिंग के नाम पर हम आज जिक्र छेड़ रहे हैं। एक ऐसा उपन्यास जो सिर्फ डराता नहीं बल्कि इंसानी तन्हाई, टूटते रिश्तों और दिमाग की अंधेरी सुरंगों का सफ़र भी कराता है। द शाइनिंग मनोवैज्ञानिक हॉरर शैली की एक उत्कृष्ट और कालजयी उपन्यास के माध्यम से आज हम बात करेंगे।

0: सन 1977 प्रकाशित हुआ था उपन्यास दशायनी। मानसिक टूटन की, डर की, अकेलेपन की कहानी है और केंद्र में है ओवरलुक होटल। विशाल बर्फ से घिरा हुआ सुनसान होटल, सर्दियों में पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ एक होटल। कहानी शुरू होती है जैक टॉरेंस नाम के व्यक्ति से। जैक लेखक भी है लेकिन जीवन भरा है संघर्षों से। शराब की लत, गुस्सा, असफलता, बस सभी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। परिवार में पत्नी है वेंडी, बेटा है डेनी। इनके साथ करना चाहता है नई शुरुआत और इसी कोशिश में वो बन जाता है ओवरलुक होटल का केयरटेकर। काम बहुत आसान लगता है ना, पूरी सर्दी सिर्फ होटल की तो देखभाल करनी है, लेकिन बाहर बर्फबारी के कारण कोई आने जाने वाला नहीं होगा। बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है।
1: श्रोताओं, होटल के एकांत और अलौकिक प्रभाव के कारण जैक का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वहीं डैनी के पास द शाइनिंग नाम की एक विशेष टेलीपैथिक क्षमता होती है जिससे वो होटल में छिपी बुरी ताकतों और भूतों को महसूस कर सकता है।
0: और वहीं होटल का एक बुजुर्ग कर्मचारी डिक हैलोरन डैनी की शक्ति को पहचान लेता है और उसे चेतावनी देता है कि होटल में है बहुत कुछ खतरनाक। धीरे धीरे होटल जैक के मन पे कब्जा करने लगता है। अकेलापन, हताशा, भीतर छुपा गुस्सा उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगता है। वहीं मैं आपको सुनवाती हूँ उपन्यास का एक छोटा सा अंश जो उस भयावह वातावरण को महसूस करवाता है। डैनी ने लंबे सुनसान गलियारे की ओर देखा। होटल के कालीन पर उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे लगा जैसे दूर कहीं कोई हंस रहा हो। वो रुक गया। हवा ठंडी थी लेकिन उस ठंड में भी किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास था। तभी उसकी नजर दीवार पे पड़े एक साय की ओर गई और भीतर डर की एक तेज लहर दौड़ गई। सोचिए ना, ये है स्टीफन किंग की लेखनी की ताकत। सिर्फ डर ही पैदा नहीं करते बल्कि वातावरण को भी इस तरह से रच देते हैं कि पढ़ने वाला पाठक स्वयं को उस जगह पे मौजूद करने लगता है और उस डर को महसूस करने लगता है।

0: जी हाँ श्रोताओं, किताब भूत प्रेत की डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर उतारी गई पारिवारिक त्रासदी है। दि शाइनिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका माहौल। स्टीफन किंग डर को किसी भूत के चेहरे में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपे अंधेरे में तलाशते हैं। जैक का धीरे धीरे बदलता व्यवहार, उसका पागलपन की तरफ बढ़ना और होटल का रहस्यमय असर पाठक को एक ऐसी बेचैनी देता है जो किताब बंद होने के बाद भी देर तक साथ रहती है।
1: और ये उपन्यास सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली डर आखिर क्या है। इस सवाल को कहानी के माध्यम से स्टीफन किंग हमारे सामने रखते हैं और होटल स्वयं भी एक पात्र की तरह दिखाई देता है, पढ़ने में आता है। ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं, एक जीवित शक्ति की तरह व्यवहार करता है। और द शाइनिंग पढ़ते समय पाठक सिर्फ डरता ही नहीं, मानसिक रूप से कहानी में फंसता भी चला जाता है। एक प्रसिद्ध फिल्म भी इसी उपन्यास पर आधारित बनी थी, निर्देशन किया था स्टैनले क्यूबिक ने। और सोचिए ना, जब लिखा गया कि बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, होटल पूरी दुनिया से कट चुका था, दूर कहीं घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दे रही थी। जैक खाली बार के सामने खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उससे बात कर रहा था। होटल जाग चुका था, अब वो अकेला नहीं था। बस यही है श्रोताओं द शाइनिंग की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ डर केवल दिखाई और सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। हॉरर साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है और आज भी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। तो अगर आप भी मनोवैज्ञानिक रहस्य, गहरे वातावरण को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो लंबे समय तक मन में बनी रहे, तो ये उपन्यास द शाइनिंग स्टीफन किंग द्वारा लिखा हुआ आज ही जरूर पढ़िएगा।

0: बिल्कुल श्रोताओं, ये जो खूबसूरत गीत अभी आपको सुनाई दिया था, ये था फिल्म मौसम से, जिसे निर्देशित किया था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, टेलीविजन और फिल्मों में और थिएटर में काम करने वाले प्रसिद्ध रंगकर्मी अभिनेता पंकज कपूर ने।
1: और
0: बिल्कुल
1: आज
0: आज,
1: जन्मदिन मना रहे हैं पंकज कपूर।
0: और साथ ही साथ आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीरा भाई बरोदेकर का, जिन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये भारत की ऐसी पहली महिला कलाकार थी जिन्हें पुरुषों के वर्चस्व के दौर में लोग कॉन्सर्ट में सुनने आए थे। और 15 अगस्त के दिन जब भारत देश आजाद हुआ था तो लाल किले पर खास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया था, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। साथ ही साथ आज ही के दिन सन 1906 में जन्म हुआ था हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले निबंध लिखे थे।
1: श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 21वें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर को। आज उनकी जयंती है। और ये वायुसेना के पहले हेलीकॉप्टर पायलट थे जिन्हें वायुसेना प्रमुख बनने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने भारतीय वायुसेना की पहली MI-17 हेलीकॉप्टर यूनिट की स्थापना की थी और 1985 में उसका नेतृत्व भी किया था। साथ ही हम याद कर रहे हैं भारत के जाने माने कवि मदन कश्यप जी को। उनकी कृति दूर दूर तक चुप्पी और अपना ही देश के लिए उन्हें केदार सम्मान से सम्मानित किया गया था। साथ ही याद कर रहे हैं हुल्लड़ मुरादाबादी को।
0: बिल्कुल, ये भारत के प्रसिद्ध कवि रहे और बहुत सारी व्यंग्य कृतियां भी इन्होंने लिखी हैं, और हास्य को लोगों के जीवन में उतारने का प्रमुख श्रेय जाता है हुल्लड़।

0: मुरादाबादी को।
1: जी, इतनी ऊंची मत उड़ो, क्या करेगी चांदनी, ये अंदर की बात है। और हुल्लड़ का हुल्लड़ जैसी हास्य कविताओं से उन्होंने भरपूर पुस्तकें लिखी और इन्हें कलाश्री और अट्टहास सम्मान, साथ ही हास्य रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। काका हाथरसी पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आज हम हिंदी फिल्म और रंगमंच में अभिनय और इतिहास के पुरुष जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था, भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर को भी याद कर रहे हैं।
0: और बिल्कुल, इन्होंने अपनी थिएटर कंपनी भी शुरू की थी और बहुत सारी फिल्में इन्होंने की, और इनका पूरा परिवार जो है वो फिल्मों से जुड़ा हुआ है। और इन्हें देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण और भी बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। और साथ ही साथ प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश को भी हम याद कर रहे हैं। आज ही के दिन इनका निधन हुआ था और बहुत सारी फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और उसके अलावा यश भारती पुरस्कार भी दिया गया। बिल्कुल, चाहे योगेश गौड़ की बात करें या पृथ्वीराज कपूर की बात करें, हिंदी फिल्म जगत को इन्होंने जो अपना योगदान दिया उसे हम भुला नहीं सकते हैं। तो पृथ्वीराज कपूर, मुगले आजम, ये दोनों एक ऐसा अटूट बेजोड़ संगम बने जो आज भी दर्शकों के दिलों में जीवंत है।

श्रोताओं, हम अदबी दुनिया के गीतकार योगेश जी को याद कर रहे हैं। उनकी कलम ने एक खूबसूरत जुबान को अक्षरों में ढाला है। विस्तृत और बेहतर सोच के साथ अलग अलग उनकी कविताएं, अलग अलग गीत हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जीवन दर्शन है, दुखी मन है तो उसका मरहम भी मिलता है, अंधेरे में रोशनी की लकीर भी नजर आती है, जिंदगी की पहेली को सोचते बूझते जीवन के तराने गुनगुनाते हैं, अपने गीतों में जिंदगी का फलसफा बयां करते हैं। गीतकार योगेश।

0: बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ बस आज का नमस्कार यहीं तक। आपका आज का दिन अच्छा ही नहीं गुजरे, बहुत अच्छा। करते हैं यही शुभकामना नमस्कार की पूरी टीम की ओर से और साथ ही साथ आपके दो दोस्तों की ओर से।
1: तो इजाजत दीजिए गुलदास खान और
0: स्वाति भंसाली को आज के इस प्रोग्राम से। नमस्कार, नमस्कार।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज न करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार FM बैंड 102.1 MHz पर। आपने ट्यून इन किया है FM सन सिटी चैनल। आज शुक्रवार है, आज सुनेंगे आप कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल। इन दिनों जोधपुर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी अपने शबाब पर है और इसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। और जितना हो सके धूप में जाने से बचें, अपने आप को ढक करके रखें, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर आप इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर के शुरू होने का। तो लीजिए हाजिर हो चुके हैं हम इस प्रोग्राम के साथ में। आज एक मेहमान हमारे साथ में विशेषज्ञ

0: आनंद और हम बातचीत करेंगे। साथ ही आप लोग भी इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ते हैं हर बार की तरह, तो 9413329359 के जरिए आप जुड़ सकते हैं। मैं संजय व्यास हूं, मेरे साथ मेरे साथी मनीष और राजेश के साथ में हमारे होस्ट कल्याण हैं और विशेषज्ञ मेहमान हैं आज डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में आप हेड हैं, तो जाहिर है कि बात हम आपके गुर्दों के स्वास्थ्य की करेंगे आज। और गुर्दे हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अक्सर अगर सूची हम बनाने लगे तो दो या तीन जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उनमें गुर्दे आते हैं, और इनका काम हमारे शरीर के अपशिष्टों को हमारे शरीर से बाहर भेजना है। हम जानते ही हैं कि ये काम करने में गुर्दों को बहुत मेहनत लगती है, और ये काम ये अहर्निश करते हैं, दिन और रात करते हैं ये काम। ऐसा नहीं है कि जब आपको अर्ज होती है पेशाब की तभी गुर्दे अपना काम शुरू करते हैं, बल्कि ये जो छानने की प्रक्रिया है ये अहर्निश चलती रहती है, प्रतिक्षण चलती रहती है। और चूंकि ये बहुत मेहनती अंग है, बहुत परिश्रमी अंग है, तो इसलिए जाहिर है कि थोड़ी सी इसकी केयर की दरकार रहती है। किस तरह से गुर्दों में समस्याएं आती है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे गुर्दों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और अगर गुर्दों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तो सीधे सीधे हमारा अपना स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये महत्वपूर्ण बातचीत हमारी होगी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में। तो डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आकाशवाणी जोधपुर के स्टूडियो पर।
1: संजय जी, आपका और सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार मुझे स्टूडियो में बुलाने के और इस अवसर के लिए।
0: हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका संभवतः पहली बार ही आना हुआ है, इससे पहले आप दूसरे प्रोग्राम में आए थे, लेकिन हेलो डॉक्टर प्रोग्राम जो लाइव हमारा प्रोग्राम होता है और श्रोता लाइव सुनते भी हैं और व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भी भेजते हैं, इस प्रोग्राम में आप पहली बार आए हैं। तो थोड़ी सी और आप, चूंकि जब भी हॉस्पिटल में आपको दिखाने के लिए मरीज बनकर के हमारे श्रोता आते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता सभी लोग हैं और वो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में आते हैं, तब वो आपके मरीज पेशेंट होते हैं, तो एक हेचक और संवाद का अंतराल रहता है। थोड़ा सा इस अंतराल को हम पाटने की कोशिश करेंगे और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, कब जोधपुर आपका आना हुआ, आपकी पढ़ाई और चिकित्सा विज्ञान की उच्च शिक्षा कहाँ कहाँ हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
1: देखिए, मैंने जो मेडिकल की जो प्रथम डिग्री MBBS होती है वो मैंने अजमेर से की थी। उसके बाद जनरल मेडिसिन में PG करने के लिए मैं दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में गया था, और तत्पश्चात मैंने नेफ्रोलॉजी में DM किया था, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है, वो BHU वाराणसी से।
0: बिल्कुल।
1: तो वहाँ से करने के पश्चात 2017 में मैं राजकीय सेवा में चयन होने के पश्चात जोधपुर में आया, और फिर 2017 से लेकर अब तक मैं जोधपुर की सेवा में तत्पर हूँ।
0: बिल्कुल। तो जोधपुर आपके लिए घर है या अब घर बन चुका है?
1: अब वैसे मेरा मूल निवास बीकानेर है, लेकिन अब जोधपुर ही मेरा घर है।
0: बिल्कुल। और अगर देखते हैं तो ट्विन सिटीज जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो जोधपुर और बीकानेर ऐसा लगता नहीं कि अलग है, दो भाई ऐसा लगता है कि दोनों जो है संस्कृति और भाषा की दृष्टि से एक ही परिवार के सदस्य हैं, इस तरह का महसूस होता है।
1: देखिए, इतिहास से भी देखा जाए तो बीकानेर की शुरुआत जोधपुर से हुई है, यहीं से उठ के राव बीकानेर,
0: यहाँ के जो भाई छोटे भाई थे वो बीकानेर चले गए।
1: तो संस्कृति में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह की बोली, विचार, संस्कृति, खानपान एकदम से है, तो कोई फर्क महसूस नहीं होता है कि कहीं और हैं।
0: तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अपने ही घर में फिर से स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और हमारे तमाम दोस्त जो हैं वो अब आपसे वाकिफ हो चुके हैं, अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, और हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। तो गुर्दों के बारे में अगर हम डॉक्टर साहब जानना चाहें, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो लोगों को पता है, क्योंकि जब गुर्दे ख़राब होने शुरू होते हैं तो हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं होती है सूजन के रूप में, बहुत तरह की, मतलब सीधा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला अंग है, बिल्कुल इधर उधर का रास्ता नहीं है। अगर इसका स्वास्थ्य खराब हुआ, सीधा हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। क्या दिक्कतें आती हैं आमतौर पर, क्या गुर्दों में जो दिक्कतें आती हैं वो ठीक हो जाती हैं, या गुर्दों में होने वाली दिक्कतें सारी ऐसी हैं जिनका इलाज बहुत लंबा चलता है?
1: देखिए, गुर्दा हमारा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालता है। तो उसकी प्रॉब्लम के, जैसे किचन की सिंक या टॉयलेट है, उसको सारा लोड सहन करना पड़ता है, वो बहुत जल्दी चोक एंड खराबी होती है, बहुत मेंटेनेंस ही है। सेम चीज़ पे भी अप्लाई होती है, बॉडी में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आएगी, अल्टीमेटली उस किडनी ने फिल्टर करती है, उसे सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए किडनी दो तरह से खराब होती है, एक तो टेम्परेरी किडनी फेलियर, आपको मलेरिया हो गया, आपको हार्ट अटैक आया, उसके बाद में BP ऊपर नीचे हो गया, आपको

0: इन्फेक्शन हो गया, डेंगू हो गया, बहुत तेज लूज मोशन हो गए, पानी कमी हो गई, आपको एक्सीडेंट हुआ, आपको ब्लड लॉस हो गया, छाती में निमोनिया हो गया, मतलब शरीर के किसी भी अंग में गंभीर रूप से कोई दिक्कत आई, तो चूंकि किडनी और सारे फिल्टर्स एवरीथिंग को फिल्टर करती है तो उस पर लोड आने होते हैं, उसको टेम्परेरी किडनी फेलियर बोलते हैं। अधिकांश पेशेंट्स में यही मिलता है जब आप पहली बार किडनी की बात करते हैं तो। और इसकी अच्छी बात ये कि मैक्सिमम पेशेंट में जब अंडरलाइंग कंडीशन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके पश्चात ये ठीक हो जाता है, तो मतलब टेम्परेरी किडनी फेलियर का अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, बट ये रिकवरेबल होता है और मैक्सिमम पेशेंट में पूर्णतया कंप्लीटली रिकवर हो चुका होता है और उनको आगे लाइफ में बहुत कम या
1: जी,
0: शायद नहीं के बराबर रिस्क रहता है।
1: तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको एक्यूट किडनी फेलियर भी कह
0: जी
1: सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ध्यान नहीं दिया जाए तो ये किडनी फेलियर कैन लीड टू डेथ ऑल्सो।
0: यस, अगर उस टाइम टाइमली मैनेज ना हो, क्योंकि किडनी फेलियर होने के पश्चात में सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, दवाइयों की डोज चेंज होती है, आपको कितना फ्लूड्स देना है वो चेंज होता है, जो ऑर्गन ख़राब हुआ उसकी रिकवरी में भी दिक्कत आती है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट बहुत स्पेशलाइज हो जाता है। वो प्रॉपर तरीके से अगर टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिलकर उसको काम करती है, जिसमें किडनी स्पेशलिस्ट हैं, जो प्राइमरी डिपार्ट बीमारी उसके स्पेशलिस्ट हैं, आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, मिलकर काम करते हैं, तो वो मैनेज रहता है। अगर प्रॉपरली नहीं होता तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं।
1: ऐसी कौन सी बीमारियां या बुखार होते हैं जो एक्यूट या कम समय के लिए टेम्प्रेरी तौर पर किडनी को प्रभावित करते हैं? कौन से ऐसे बुखार हैं?
0: देखिए, पश्चिमी राजस्थान में अगर एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी, जो नया टर्म है इसके बारे में, ए के आई के बारे में कारण की बात करें, तो मैक्सिमम पेशेंट जो हमें जोधपुर में मिलते हैं वो हमें मिलते हैं, मैक्सिमम पेशेंट मिलते हैं हमारे को, एक तो स्नेक बाइट की वजह से,
1: अच्छा,
0: अपने
1: उसमें भी किडनी पे असर
0: जी
1: पड़ता है। जी
0: जो भी अपना जो स्पेशली जो अपना ये हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट है जिसको बांडी बोलते हैं,
1: अच्छा,
0: तो
1: जो खून
0: खून
1: में टॉक्सिन जाता है, जहर, वो
0: जी
1: आपकी किडनी पे भी प्रभाव
0: वो
1: डालेगा ही
0: हाँ जी
1: डालेगा।
0: वो खून को गला देता है पूरा, तो वो सारा जो गला हुआ खून, हिमोलाइज खून है, वो किडनी पर असर डालता है, वो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली हमारे बाड़मेर जैसलमेर की साइड से, बहुत फलोदी साइड से काफ़ी पेशेंट आते हैं। उसके अलावा मलेरिया, जब सीजन आता है तो मलेरिया और डेंगू के पेशेंट्स में किडनी फेलियर बहुत कॉमनली मिलता है हमारे को। दोनों कंडीशन में आउटकम काफ़ी अच्छा रहता है, अंडरलाइन बीमारी कंट्रोल करने के बाद में किडनी फेलियर मैक्सिमम पेशेंट्स में,
1: अंडरलाइंग यानी अगर उसको कोई और
0: मलेरिया
1: बीमारी
0: एंड
1: है।
0: डेंगू
1: जी,
0: इनको कंट्रोल।
1: ये
0: इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है वो हमें मिलता है, जो एल्डरली पर्सन हैं इनमें इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, खासतौर पे एल्डरली में यूरिन इन्फेक्शन बड़ी कॉमन ली, यूरिन इन्फेक्शन थोड़ा सा डिले कर दिया एंटीबॉडी देने में या जांच कराने में, तो वो किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, बट उनका भी आउटकम बड़ा अच्छा आता है टाइमली एंटीबायोटिक एंड ट्रीटमेंट से, और समटाइम डायलिसिस नीड से वो रिकवर हो जाते हैं।
1: इसमें विंडो कितनी देता है ये बीमारी जो है किडनी, जिसमें टेम्परेरी तौर पर किडनी का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, विंडो कितनी होती है आपके पास काम करने की? और अगर ध्यान नहीं दें, लापरवाही बरतें, तो
0: देखिए,
1: नुकसान ज़्यादा हो सकता है।
0: हाँ, ऐसी बीमारियों में विंडो पीरियड यूजली एक दो दिन का होता है, उस टाइम पे अग्रेसिवली, जैसे डायरिया हो गया, आपने इमीडिएटली उसका अग्रेसिवली, जैसे उसका यूरिन कम होना शुरू हुआ, पहला साइन मिला हमें, या मलेरिया हुआ, यूरिन कम हुआ, अग्रेसिवली ट्रीटमेंट शुरू हो गया एक दो दिन में, तो ये इसका ए के आई का होने का चांस, या अगर हो गई तो उसका प्रभाव कम हो जाता है।
1: जो टेम्प्रेरी किडनी फेलियर का जिक्र आपने किया है और उसका रिजल्ट आपने कहा बहुत अच्छा है, उसके बाद जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आती, मतलब इसका कोई ऐसा अवशेष असर शेष नहीं रहता है कि आपको बाद में इसी वजह से फिर कोई आगे दिक्कत आए, एक बार ट्रीट हो गया तो वो फुली ट्रीटेड होता है।
0: देखिए, ए के आई के अंदर मोर देन 95% के आसपास पेशेंट्स रिकवर करते हैं, 5% पेशेंट का हम मानते हैं कि उनको सम सॉर्ट ऑफ किडनी प्रॉब्लम तो रह जाता है अच्छा खासा, बट जो
1: बिल्कुल
0: 95 भी रिकवर होते हैं वो फुल्ली रिकवर नहीं होते हैं। इन लोगों में अगर अगले 20 से 30 साल तक देखा जाए, शॉर्ट टर्म में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में देखा जाए तो इन लोगों के अंदर भी आगे जाके परमानेंट किडनी डैमेज की और हाइपरटेंशन होने का रिस्क आम जनता से 2 से 3 गुना ज़्यादा रहता है।
1: जो बुखार की वजह से आपने कहा किडनी पर असर पड़ता है, जिसको ठीक किया जा सकता है, इस अंडरलाइन कंडीशन के अलावा अगर दूसरी कोमॉर्बिड स्थितियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, अगर वो भी साथ में हो और फिर बुखार की वजह से किडनी पर असर पड़े, तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा और मुश्किल होता है?
0: जी, जो ए के आई है इसको ट्रेडिशनली 2 पार्ट्स में बांधते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड ए के आई और हॉस्पिटल एक्वायर्ड ए के आई। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड ए के आई यूजली, जो मैंने अभी आपको कारण बताया, डेंगू, मलेरिया, स्नेक बाइट, कोई पॉइजन वगैरह, उनसे होती है, वो यूजली हेल्दी लोगों में, यंग में, क्यों आउट गोइंग होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं उनके में होते हैं, आउट उन लोगों के अंदर इसका आउटकम अच्छा आता है। दूसरी ए के आई होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड ए के आई, आप हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं या साथ में कोई इन्फेक्शन साथ एडमिट हुए हैं, ये यूजली एल्डरली मिलती है, कोमोरबिड का हार्ट कंडीशन है, डायबिटिक्स हैं, पैरालिसिस हो रखा है, कैंसर पेशेंट हो सकते हैं, ये अलग होती है। इसका आउटकम, चूंकि ऑलरेडी बॉडी में बर्डन ऑफ डिजीज इतना ज़्यादा होता है कि इसका आउटकम काफ़ी

0: खराब होता है।
1: बिल्कुल। लेकिन जैसे मान लीजिए कि डायबिटीज़ की वजह से आपके गुर्दे जो प्रभावित होते हैं और वो क्रोनिक की तरफ ले जाते हैं, उसकी बनिस्पत फिर भी अगर आपको इस तरह से कोई किडनी पर असर हुआ है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल से ही सही लेकिन हो जाएगा।
0: देखिए, डायबिटिक पेशेंट के अंदर आपका टेम्परेरी किडनी फेलियर मिल सकता है, परमानेंट किडनी फेलियर मिल सकता है, और परमानेंट के ऊपर
1: इस पर हम अगले पार्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो किडनी पर क्या क्या असर हो सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक्यूट, उसके बाद फिर हम एक सॉन्ग का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम पूरा इसी पर फोकस करेंगे कि क्रोनिक किस तरह से किडनी है वो खतरनाक हो सकता है और उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन यही है कि आमतौर पर जो है वो अगर टेम्प्रेरी किडनी फेलियर है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और फिर आपको जीवन में

0: टेम्प्रेरी किडनी फेलियर है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और फिर आपको जीवन में दिक्कतें नहीं होती
1: जी,
0: हैं।
1: इसका इतना स्ट्रेस करने का मेरा रीजन ये है कि लोगों में जो भ्रांतियां बनी हुई कि सारे किडनी फेलियर एक मानते हैं,
0: यस
1: इवन टेम्परेरी किडनी फेलियर पेशेंट जो हमारे यहाँ पे मलेरियल है, स्नेक बाइट है, टेम्परेरी कुछ दिन कुछ हफ्ते रहने से ठीक हो जाता है, उसको भी पेशेंट किडनी का नाम सुनते ही ले जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम सेवा करेंगे, जो कि कम्प्लीटली रिकवरेबल है एक तरह शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म है पता नहीं कौन सा पेशेंट जाके होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो पूरी लाइफ मिल रही है उसको, वो भी लेके जा, इतनी भ्रांति फैली हुई है। तो मेरा ये एक ही पे स्ट्रेस करने का आज बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कोई किडनी प्रॉब्लम होती है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टेम्प्रेरी है या परमानेंट है। टेम्प्रेरी का शॉर्ट टर्म में आउटकम बहुत अच्छा है, भगवान के लॉन्ग टर्म में भी आगे अच्छा रहता है। टेम्प्रेरी परमानेंट किडनी फेलियर का आउटकम अलग होता है, उसमें भी अलग चीज़ें होती है, तो किडनी फेलियर नाम सुनते घबराना नहीं चाहिए।
0: जी, ये हम मान सकते हैं सर कि जो टेम्प्रेरी किडनी फेलियर है या टेम्प्रेरी तौर पर जो किडनी या गुर्दे प्रभावित होते हैं उसमें गुर्दों का जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन जो क्रोनिक गुर्दों की बीमारियां हैं उसमें गुर्दों की जो छलनी होती है, छलनी जो है वो ही प्रभावित होने लग जाती है, इसलिए फिर उसका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए शायद ये दिक्कतें होती होंगी।
1: जी, टेम्परेरी किडनी फेलियर में जो भी किडनी को जो डैमेज होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, वो हीलिंग होकर रिकवर हो जाता है। परमानेंट किडनी फेलियर में जो भी आपका होता है वो फाइब्रोसिस हो चुका होता है, तो वो परमानेंटली सम पार्ट ऑफ किडनी के जो है नेफ्रॉन्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो फिर रिकवरेबल नहीं होते।
0: जी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिकित्सा विज्ञान के पास बहुत सारे जवाब आज की तारीख में मौजूद हैं।
1: जी
0: अगर आपको क्रोनिक समस्या भी किडनी की हो गई है, क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक चलने वाली समस्या है, तब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, चिकित्सा
1: जी
0: विज्ञान के पास बहुत उत्तर हैं, और अंतिम उत्तर जो बहुत अच्छा आजकल रिस्पॉन्ड करता है वो ट्रांसप्लांट का है, तो मतलब विकल्पों की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। हम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर से ये बहुत उपयोगी बातचीत आगे भी करेंगे। आप प्रोफेसर और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। फिलहाल सर एक गाना सुनने का वक्त आ गया है, तो हमारे दोस्त इंतज़ार करते हैं कि काफ़ी अरसे से कोई सॉन्ग नहीं चल रहा है, और क्या डॉक्टर साहब को गाने वाने पसंद नहीं है? तो गाने तो पसंद है आपको,
1: जी बिल्कुल,
0: गाने पसंद है आपको, किस तरह का, कौन सा गाना आप हमारे दोस्तों को
1: मैं
0: सुनवाना
1: सामान्यतः
0: चाहेंगे?
1: पुराना म्यूजिक ही पसंद करता हूँ, हेमंत दा, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, लता जी के।
0: गानों के मामले में सर हमने ये देखा है कि चाहे वो मिलेनियल्स वाले हो या जेंजी वाले हो, उनको जो सदाबहार वाले गाने हैं वो सबको पसंद आते हैं, तो इसका क्या कारण है? मतलब आमतौर पर मानते हैं कि नई पीढ़ी है तो नए किस्म का म्यूजिक ही पसंद करेगी, लेकिन ये जो म्यूजिक है ये अक्रॉस जनरेशंस चलता रहा है।
1: देखिए, एक तो जो म्यूजिक पहले बना था वो प्रॉपर शास्त्रीय संगीत की लय पे, सुर में, ताल में बना था, और उस म्यूजिक में फीलिंग होती थी। आज का जो म्यूजिक है उनके वर्ड्स की कोई फीलिंग नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बीट्स के लिए बनाए जाते हैं कि जो एक दो दिन के लिए आपको म्यूजिक चार्ट में चढ़ जाते हैं, फिर अगले महीने गायब हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म चल नहीं पाते।
0: बिल्कुल, जैसे सनातन है हमारा तो वो हमेशा से चलने वाला और आगे भी चलने वाली चीज़ है, वैसे ही ये जो म्यूजिक है ये भी सनातन किस्म का है,
1: बिल्कुल
0: तो ये कभी न तो नया होगा न पुराना होगा, ये
1: बिल्कुल
0: सनातन ही रहेगा।
1: बिल्कुल
0: तो आपकी पसंद का ये गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट के हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर 102.1 FM पर।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वागत दोस्तों 02.1 FM रेडियो सन सिटी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। आज विशेषज्ञ मेहमान है हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। और गुर्दों के स्वास्थ्य पर हम बात कर रहे हैं, एक्यूट किडनी फेलियर कम समय के लिए जो ठीक हो जाती है उस पर बात की है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो गुर्दों को दो चार होनी होती है, खास करके जो लोग डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको, और वो होती है गुर्दे फेल होने की समस्या। और ये समस्या इस तरह की होती है जो कई बार रिवर्सिबल नहीं होती है। इसमें भी क्या उम्मीद की हमारे पास किरणें हैं वो हम बात करेंगे। और जो हमारे श्रोता हैं जो हमें लगातार 9413329359 पर व्हाट्सएप करके सवाल पूछ रहे हैं, तो ये कैलाश सोलंकी जी घंटाघर जोधपुर से पूछ रहे हैं कि पानी पीने के बाद पेशाब रुक रुक कर आता है, इसका क्या कारण है, एक फ्लो नहीं बनना, ये किडनी से संबंधित है या नहीं है सर?
2: देखिए, पेशाब का फ्लो कम बनने का मुख्य कारण प्रोस्टेट का पहला सिम्टम होता है
1: जी,
2: तो उन्हें अपने प्रोस्टेट के लिए सोनोग्राफी और टेस्ट करनी चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम गुर्दों के स्वास्थ्य की ये बात करें तो जो एक बड़ा चैलेंज गुर्दों को आता है वो गुर्दों का परमानेंटली डैमेज होना, ये सर किस वजह से होता है? क्या केवल और केवल इसके लिए दो तीन बीमारियां ही जिम्मेदार है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह, या फिर कुछ ऑटो इम्यून, जैसे आजकल सब चीज़ों में ऑटो इम्यून होने लग गया है, उसकी वजह से भी होता है? मुख्य तौर पर आप मतलब हमारे पेशेंट्स के हिसाब से या दोस्तों के हिसाब से अगर बताएं तो यहाँ पर जो स्थितियाँ पाई जाती हैं उनके हिसाब से मुख्य कारण कौन सा है गुर्दे खराब होने का?
2: देखिए, जो अभी नेशनल डेटा कुछ साल पहले पब्लिश हुए हैं उस हिसाब से इंडिया में 13%

0: पॉपुलेशन को सम सॉर्ट ऑफ किडनी प्रॉब्लम है, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम कितना है।
1: 100 में से 13 आदमियों को है कोई ना कोई प्रॉब्लम।
0: अब इसमें अच्छी बात यह कि 7-8% को बहुत माइल्ड किडनी प्रॉब्लम है।
1: अच्छा,
0: मेजोरिटी पेशेंट को पता
1: तो ये
0: 13 नहीं है।
1: वाले क्रोनिक वाले ही हैं या एक्यूट वाले भी साथ में?
0: क्रोनिक
1: वाले हैं
0: जी।
1: 13 वाले ऐसे हैं जिनका इलाज चलेगा लंबा,
0: जी
1: लेकिन उनमें सात हर
0: सात
1: सौ
0: से
1: में
0: आठ
1: से
0: परसेंट
1: 7-8 लोग 13 में से ऐसे हैं जिनको कोई बड़ी समस्या नहीं
0: बड़ी
1: है।
0: समस्या नहीं, स्मॉल सम अमाउंट ऑफ किडनी फंक्शन की वीक हो चुके हैं, बट उनको आगे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उनको कोई ऐसा एडेड नुकसान ना हो जाए कि जिनसे सडनली उनका किडनी फंक्शन अचानक से गिर जाए। तो हम एक बड़ी समस्या से डील करने जा रहे हैं आने वाले पिछले अगले नेक्स्ट 2 डिकेड्स के अंदर। जैसे डायबिटीज आज इंडिया में वर्ल्ड में हाइएस्ट जो प्रीवलेंस है इंडिया के अंदर आ गई है, तो नेक्स्ट जो आपकी बीमारी जो आने वाली है वो किसके पीछे तो किडनी है, क्योंकि किडनी के कमज़ोर होने या सीकेटी के जो मुख्य कारण हैं उसमें ट्रेडिशनली जो पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। यही दोनों मुख्य कारण इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर खराब बात यह है कि डायबिटीज़ की जो अकरेंस है वो अर्ली है, कंट्रोल बहुत पुअर है, और ज़्यादा परसेंटेज लोगों को हम मानते हैं 30-40% ओवर द लाइफ स्पान डायबिटिक सीकेडी में कन्वर्ट हो रही है, बट इंडिया में ये डेटा शायद इससे कहीं ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द पुअर कंट्रोल एंड अनएजुकेशन।
1: तो इसमें जो किडनी का काम जो फंक्शन है वो प्रभावित किस तरह से होता है? जैसे अपशिष्ट के रूप में जो चीज़ें बाहर भेजने की होती हैं उसके साथ में क्या कुछ लीकेज भी होने लग जाता है या क्या होता है, या फिर छलनी बंद हो जाती है, क्या होता है ऐसा?
0: देखिए सीकेडी के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका फिल्ट्रेशन जिसको अपने एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, कुछ पार्ट फाइब्रोस जाएंगे प्रोग्रेसिवली, जैसे फाइब्रोस बढ़ता जाएगा वैसे किडनी फंक्शनिंग गिरती जाएगी।
1: ये जैसे तो, चाय की छलनी होती है
0: जी,
1: उस छलनी में कुछ छेद अगर बंद हो जाते हैं
0: जी,
1: तो नेचुरली आपके जो चाय छानने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी
0: जी।
1: ये एक प्रक्रिया, ये बात हो सकती है
0: जी, और सिंप्लीफाइड वे में।
1: और छलनी अगर कहीं से फट जाए तो आपके साथ में वो चाय के दूसरे अपशिष्ट भी आ
0: जाएंगे। तो इसको हम मेजर करते हैं GFR से, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन एट GFR से। तो किडनी फंक्शंस की जो बात करते हैं हम GFR करते हैं कि नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन की GFR 100 ml के आसपास होती है पर मिनट, उसको उससे जितनी नीचे हो जाएगी उस हिसाब से उसके GFR गिरनी और फंक्शन होती है।
1: यानी ये फिल्ट्रेशन की रेट है
0: जी,
1: जो छानने की रेट है ये करीब 100 ml
0: पर मिनट
1: पानी या द्रव जो है वो एक मिनट में
0: साफ होता है।
1: और ये 24 घंटे काम चलता है सर?
0: चौबीसों घंटे
1: चलता है
0: GFR। दूसरा जो अपना कि आपसे लीकेज होने लग जाए तो वो होता है प्रोटीन। तो CKD दो पार्ट है, GFR कम हो गया या आपको प्रोटीन आ रहा है। अगर प्रोटीन लीक करता है तो लॉन्ग टर्म वो भी फिर किडनी को और अदर ऑर्गन्स को नुकसान करता है। तो हमें दोनों चीज़ों को जो भी उपलब्ध हो रही है उसको कंट्रोल और ट्रीट करना होता है।
1: जो भी CKD या क्रोनिक किडनी डिजीज होती है जो जिसका इलाज बहुत लंबा चलता है और अनट्रीटेड रह जाए तो इसका परिणाम जो है वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की संभावना के रूप में ही आ सकता है। इसकी क्या ये अच्छी बात है कि जो भी किडनी की समस्या, क्रोनिक किडनी की समस्या शुरू होती है अगर आरंभ से ही उसको पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान होता है? ये लगभग सारी किडनी की समस्याओं के बारे में होता है या बहुत रैपिडली फैलने वाली भी बीमारी होती है किडनी में?
0: मैक्सिमम किडनी फेलियर पेशेंट्स में, CKD पेशेंट्स में अगर शुरुआत में पकड़े जाए तो 7-8% जो पॉपुलेशन है जो मोस्ट लाइकली अनअवेयर है CKD की, और उनके अंदर हम प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं मेनली ट्रीटमेंट नाम पे कि कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो ना लें, हाइपरटेंशन जब भी उनको हो जाए इजीली कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट लेवें और प्रॉपर पानी इंटेक रखें, तो उनका जो किडनी का प्रोग्रेशन है वो काफ़ी लंबा डिले हो जाएगा और मैक्सिमम लोग शायद अपने लाइफ स्पान में कभी भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पाएंगे।
1: बिल्कुल, क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं अगर आपको कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस हैं? डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के अलावा भी क्या CKD हो सकती है लोगों को? डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को अगर किसी पेशेंट में नहीं है तब भी क्या होने के चांस है, ताकि जो जिन लोगों को ये नहीं है वो भी थोड़ा सा सजग रह सकें?
0: देखिए इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी बीमारी होती है, एक ADPKD होता है जिसमें किडनी में सिस्ट बनने लग जाती है, ये फैमिली दर फैमिली चलती है और इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है, इसकी हमें काफ़ी पेशेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियां होती है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो जाती है जिससे किडनी खराब होती है, इन लोगों में यूजली साथ में प्रोटीनूरिया मिलता है, तो इनको ग्लोमुलर डिजीज में मानते हैं, वो एक बड़ा चंक हमारा होता है। सैडली हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इनको रोकने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी कब खराब होगी आपको कुछ नहीं पता होता।
1: बिल्कुल।
0: उसके अलावा एक मेजर चंक जो हमें इस पार्ट में या इंडिया के मैक्सिमम पार्ट से पॉकेट से मिलता है वो है कि अनएक्सप्लेन CKD,
1: कोई कारण नहीं,
0: कोई रिस्क फैक्टर कोई उनके अंदर नहीं है, एज कम है उन लोगों की, डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं है, बट वो क्लस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा CKD केसेज एक एरिया के अंदर मिलते हैं, तो इसको अनएक्सप्लेन CKD मिलते हैं बोलते हैं। और वेस्टर्न राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो डायबिटीज हाइपरटेंशन है रिस्क फैक्टर अर्बन पॉपुलेशन के हैं, रूरल

0: पॉपुलेशन में नहीं होते, पर वहां से भी काफी क्लस्टर्स में सिक्योरिटी पेशेंट आते हैं, तो इस एरिया में भी कुछ अनएक्सप्लेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी इंसिडेंस है।
1: अनएक्सप्लेन। और ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे इस मारवाड़ के इलाके में सीकेडी का अक्रेंस या प्रेवलेंस कितना है, काफी है और हमें सावधान रहने की आवश्यकता रहती है?
0: जी
1: है काफी,
0: काफी अलार्मिंगली हमारे पास पेशेंट अब ज्यादा नंबरों में आ रहे हैं। एक तो चूंकि अब धीरे धीरे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट डेवलप होने से पेरिफेरी लेवल पे जांचें उपलब्ध होने लग गई हैं, तो डिटेक्शन जल्दी होने लग गया है और पब्लिक भी अवेयर हो गई है, उनको मालूम चलने लग गया कि किडनी रिपोर्ट्स खराब है तो किडनी की डिपार्टमेंट दिखाना चाहिए, तो उससे भी फायदा पड़ा है। पर ओवरऑल मुझे लगता है इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रीवलेंस बढ़ी है सीकेडी की।
1: सर ये जो मौसम है इसमें लगातार आपको फ्लूइड लेते रहना है, हाइड्रेटेड रहना है आपको, और इसमें अक्सर हम चूक करते हैं, तो ये क्या हमारे गुर्दों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है? इस मौसम में हम कम पानी पिए या कुछ ऐसे द्रव हमें लेने चाहिए, वो अगर नहीं ले पाए तो नुकसान हो सकता है?
0: देखिए अगर शॉर्ट टर्म में मैसिव पानी के लॉस हो जाए, जिसको लू बोलना बोलते हैं, तो आपको एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। और इसके अलावा सीकेडी पेशेंट को मैंने बताया था कि इनकी ट्रीटमेंट का मुख्य पार्ट ये हेल्दी डाइट और अच्छी मात्रा में पानी लेना, जब तक डॉक्टर मना ना करें। अर्ली सीकेडी जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, अंदर आपको फुल हाइड्रेट रहना होता है ताकि किडनी प्रॉपरली टॉक्सिन एक्सक्रीट करती रहे, वो टॉक्सिन किडनी में इकट्ठा नहीं हो। लेट स्टेज में पानी पीने से मना करते हैं जब स्वेलिंग आने लग जाती है, तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो किडनी पे लोड तो पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और किडनी आपका चाहे कितना ही बीमार और बूढ़ा हो जाए, वो अपना काम करने से बाज नहीं आएगा, वो काम करता रहेगा, इसलिए आपको उसको काम पे लगाने से आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा बीमारी में।
0: जी
1: तो डॉक्टर सुरेंद्र, एक हम गाने के लिए और चलते हैं सर, और उसके
0: जी
1: बाद चूंकि ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है और सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज जो है उस पर हम और बात करेंगे, इलाज के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और लक्षण क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसके चलते आदमी को, मरीज को जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो फिलहाल एक अंतराल लेते हैं सर, तो अगला गाना कौन सा आपने हमारे श्रोताओं के लिए सोच रखा
0: जी
1: है?
0: हेमंदा का एक गाना है, तुम पुकार लो, वो अगर चला दें तो अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, सुनते हैं गाना, उसके बाद इस महत्वपूर्ण बातचीत में फिर से आप आ जाइएगा 102.1 FM रेडियो सन सिटी।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस ताफ्टा जोधपुर।
1: तो आइए दोस्तों इस महत्वपूर्ण बातचीत को फिर से शुरू करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आज के हमारे विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर और हेड आप गुर्दा रोग विभाग डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में अध्यक्ष हैं। तो बात हम कर रहे थे उससे पहले कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो जुड़ गए हैं, इन्होंने लिखा है कि एक हमारे साथी हैं अमृत प्रजापत जी पीपाड़ से, इन्होंने पूछा है सवाल कि कोई पेशेंट एक बार डायलिसिस पर आ जाए तो ताउम्र डायलिसिस करनी पड़ती है, क्या ये सही है और क्या डायलिसिस पर होते हुए पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है? एक सवाल और है इनका, लेकिन पहले आप पहले सवाल पर आते हैं।
2: देखिए, डायलिसिस दो कंडीशन में होता है, एक टेम्परेरी किडनी डिजीज और एक सीकेडी,
1: दोनों में होता है।
2: तो अगर टेम्परेरी किडनी फेलियर है तो वो डायलिसिस दो बार चार बार जब भी किडनी रिकवरी हो जाएगी सफिशियंट वो बंद हो जाएगा। पर अगर एंड स्टेज रिनल डिजीज हो गया है और अब लाइफ में किडनी में रिकवरी पोटेंशियल नहीं है तो फिर वो डायलिसिस लाइफ लॉन्ग होगा। और डायलिसिस से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी की डायलिसिस एंड ट्रीटमेंट लेते हैं तो लाइफ नॉर्मल वे में चल सकती है। हम हफ्ते के दो बार 8 घंटे आपसे मांगते हैं, बाकी हफ्ते के पूरे दिन आपके ही हैं। आप
1: तो क्या सर, डायलिसिस जो आजकल आने लग गए हैं वो ऐसे हैं कि आप डायलिसिस की प्रक्रिया चल रही है और आप बाजार जा सकते हैं या ऑफिस में आ सकते हैं, या फिर आपको कन्फाइंड रहना पड़ेगा हॉस्पिटल या अपने घर में और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगी वो प्रक्रिया तब आप तो कोई दूसरा काम कर सकते हैं, ऐसा होता है?
2: देखिए, डायलिसिस तीन तरह के होते हैं। जो इंडिया में जो कन्वेंशनल जो सब जगह अवेलेबल है, जो कॉमनली जनता को ऑप्शन दिया था वो हीमोडायलिसिस का है। इसमें एक सेंटर में आप जाते हैं, स्पेशलाइज्ड नर्सेज एंड ट्रीटमेंट डॉक्टर होते हैं, वो 4 घंटे चलता है और अब घर चले जाते हैं, उसके अलावा बाकी टाइम अपना काम कर सकते हैं। दूसरा डायलिसिस होता है सीएपीडी, पेरिटोनियल डायलिसिस। उसमें एक सर्जिकल विधि से पेट में कैथेटर डाल देते हैं और स्पेशल बैग्स आते हैं पानी के, उनको आप पेट में 2 लीटर के डालते हैं, फिर वो आप 6-8 घंटे आप आराम से घूमिए, फिर अपना काम करिए 6-8 घंटे और फिर से एक कमरे के अंदर जाके अपना घर पे ही करना होता है, वो आप 1.5 घंटे में उसका एक्सचेंज करके आप कर सकते हो। तो सीएपीडी का फायदा ये है कि ये इजी है, पेशेंट को घर में करने की सुविधा मिलती है तो फ्रीडम काफ़ी मिल जाती है काम करने की, चीज़ों करने की। और
1: गुणवत्ता की दृष्टि से कौन सा बेहतर है?
2: दोनों ही बराबर है।
1: बराबर है,
2: कुछ सर्टेन पॉपुलेशन है जिनमें ये बेटर है वो बेटर है, वो पेशेंट रूप
1: से काम जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वही करते हैं, वही उन्हें करना चाहिए जी। और एक सवाल और है हमारे श्रोता का कि किडनी फेलियर वाले को कम पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्या कम पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी?
2: देखिए, किडनी डिजीज मैंने बताया जब शुरुआती स्टेज में होती है,
1: जीएफआर आपको तो खूब पानी पीना है,
2: 60 ml से ऊपर जीएफआर है तो हम बोलते हैं हेल्दी पानी इंटेक रखें, कम पानी से आपका किडनी फाइब्रोसिस बढ़ता है। बट लेटर स्टेज जब आपकी किडनी की जो एक्सक्रीटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी उस लिमिट से ज़्यादा पानी को फेंक नहीं पाएगी और आपकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ने लग जाएगी और स्वेलिंग की वजह से बीपी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन पेशेंट्स के अंदर हम लोग पानी कम करने को बोलते हैं। अगर पानी कमी होती तो बीपी लो जाता, तो हम एक मेंटेन कराते हैं कि इतनी एक्सपेक्टेड इतना इनका यूरिन आउटपुट है, इतना इनकी इस लेवल पर स्वेलिंग मेंटेन रहती है, तो हर पेशेंट को उसके हिसाब से अलग उसकी पानी इनटेक बताई जाती है।
1: सर, जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है ये क्या प्रोग्रेसिव किस्म की होती है, निरंतर आपकी स्थिति खराब से खराबतर होती जाती है, ऐसा होता है?
2: देखिए, कोई भी क्रॉनिक कंडीशन बॉडी के अंदर मेडिकल लिटरेचर में वो है, वो प्रोग्रेसिव ही होती है। हर बीमारी में हमारा प्रयास ही रहता है कि उसके प्रोग्रेशन,
1: लेकिन प्रोग्रेशन को रोका जाए या कम किया
2: जी,
1: जाए जी। वैसे तो जैसे हम आए हैं तो हम लॉन्ग टर्म में हम लोग सभी जाएंगे
2: जी,
1: तो एक तरह से प्रोग्रेसिव तौर पर हम जो है वो धीरे धीरे करके जो है विलीन होना ही है, लेकिन बीमारी ये काम जल्दी करती है।

0: काम को हम रोक सकते हैं।
1: जी
0: जी सर, अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लक्षणों पर हम बात करें। गुर्दे आपके खराब होने लग गए हैं और ये क्रोनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं और क्या जांचें की जाती है, उन जांचों का मान क्या होता है जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अब ट्रीटमेंट की इमीडिएट तौर पर आवश्यकता है?
1: देखिए, सीकेडी जो अर्ली स्टेज, जो इम्पोर्टेंट स्टेज है, जहाँ पे आप उसको ट्रीट करने से कुछ डिकेड उनको डायलिसिस रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, वो स्टेज में कोई सिम्टम नहीं आते। आपने किसी और वजह से ब्लड जांच कराई या सोनोग्राफी कराई और आपको किडनी प्रॉब्लम मालूम चला, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो आपका किडनी फेलियर स्टेज 10 साल मैनुअल थी, वो 20 साल 30 साल लेट हो जाएगी। तो सीकेडी के मैक्सिमम पेशेंट में अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता है। सिम्टम्स लेटर ऑन स्टेज, एक सर्टेन अमाउंट ज्यादा किडनी फंक्शंस वीक हो गए, अब आपकी बॉडी का होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा, उस कंडीशन सिम्टम जो आते हैं उसमें मेनली सिम्टम होता है आपका पाँव में सूजन आना। सुबह उठते हैं मुंह पे सूजन आती है, फिर पाँव में सूजन आती है, उसके अलावा भूख कम लगती है, थकान बहुत रहती है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर जाने लग जाता है, जो पहले बीपी एक दवाई पे कंट्रोल था वो दो या तीन दवाइयों पे कंट्रोल नहीं आ पाता है, और लास्ट स्टेज में जाने के बाद फिर वो डायलिसिस के सिम्टम्स आते हैं।
0: जी तो प्रारंभ में जांचें कौन सी, जैसे आपने कहा कि आप किसी और वजह से जांच करवाने गए और वहाँ पर पता लगा, क्या ऐसा होता है कि आपने लास्ट 6 महीने पहले जांच करवाई ब्लड की और उसमें जैसे क्रिएटिन और ब्लड यूरिया के बारे में, ऐसे हम एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि इनकी जांच से पता चलता है, 6 महीने पहले बिल्कुल ठीक आई, तो क्या ये चांस है कि अगले 6 महीने में बिल्कुल सही आएगी, या फिर ये चांस है कि वो बिल्कुल ड्रास्टिकली भी ख़राब हो सकता है 6 महीने में? ऐसी स्थिति आ सकती है क्रोनिक किडनी की समस्या में?
1: देखिए, अगर आपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया और जो किडनी डिजीज का बीमारी का पता मोटा मोटा सिर्फ 3 टेस्ट से चल जाता है, यूरिन एग्जामिनेशन जो सर्वत्र उपलब्ध है, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया, ये तीनों टेस्ट बहुत ही सस्ते सर्वत्र उपलब्ध है, सरकारी क्षेत्र में भी सब जगह, प्राइवेट क्षेत्र में सब जगह उपलब्ध हैं, बहुत मिनिमम है, और कुछ शंका होने पर सोनोग्राफी, 4 टेस्ट से सब किडनी प्रॉब्लम का मालूम चल जाता है। और अगर आपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया और 6 महीने पहले आपका एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, 6 महीने में आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, अनटिल लेस कोई नया आपके कुछ इवेंट हो गया, आपको जैसे बताया मैंने, आपको मलेरिया हो गया, आपका हार्ट की बाईपास सर्जरी हो गई, आपको कोई दवाइयाँ चालू हो गई नई तरह की, बीपी की, शुगर की, तो उनके इफेक्ट से हो सकता है ये चेंजेस आए, अदरवाइज नहीं आएंगे।
0: कौन सी ऐसी बीमारियाँ और दवाइयाँ हैं जो आप लेते हैं और आपकी किडनी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइड इफेक्ट के तौर पे वो किडनी को भी अफेक्ट करती, किस तरह की बीमारियों की दवाइयाँ होती हैं?
1: देखिए, एक तो जैसे कि अपने जो पेन किलर्स है उनका लंबे समय से नुकसान, इस्तेमाल बहुत नुकसान करता है।
0: आमतौर पर गाँवों में गोडे दिखते हैं और लोग वो हरी पन्नी वाली दवाई के तौर पर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, वो बहुत ख़राब है।
1: जी, वही सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, एक तो उसको अवॉइड करना होता है, आपको बहुत ही जुडिशियसली पेन किलर खानी चाहिए। दूसरा, देसी इलाज, क्योंकि जो अडल्ट्रेटेड होता है, जो आपको पुड़िया बना दी जाती है उसमें अंदर क्या है किसी को नहीं पता, स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं, पेन किलर्स होती है, वो हो गया, रैम्पेंट यूज ऑफ अननेसेसरी यूज बिना सलाह के एंटीबायोटिक्स हो गया, और इसके अलावा बीपी की कुछ मेडिकेशन होती है जो बहुत अच्छी होती है, बट शुरुआत में जब उनको स्टार्ट करते हैं एक बार उनका क्रिएटिन देख लेना चाहिए, कई बार वो क्रिएटिन की मात्रा पर जिनको एसी इनहिबिटर बोलते हैं असर डालती हैं।
0: जी, अन्यथा बाकी इस तरह से दवाइयाँ सेफ होती, कम से कम वो गुर्दों को उतना एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती।
1: जी
0: जी सर, और लक्षणों में अगर कुछ ऐसी चीज़ आती है तो फिर अगर अर्ली पकड़ ली जाए तो उसका ट्रीटमेंट आसान होता है, फिर आप क्या सलाह देते हैं डायलिसिस और जो लक्षण प्रकट होते हैं उनके बीच में आपको जो विंडो मिलता है, गोल्डन पीरियड मिलता है, वो किस तरह से आदमी को फ़ायदा दे सकता है? क्या आप ऐसी रूटीन में चेंज करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में चेंज करते हैं, दवाइयाँ क्या देते हैं ऐसी?
1: जी, मैं एक उदाहरण दूंगा, आज कोई वजह से आप रूटीन हेल्थ चेकअप कराने गए, आप 40 ईयर की एज है आपकी, आप अच्छे खासे 90 केजी की हेल्थ है, आपने अपनी चलता फिरता खाते पीते आदमी मान के चल रहे हैं, अपने आपको कोई फील नहीं हो, दिक्कत नहीं हो रहा, आप थोड़ा स्मोक भी कर लेते हैं, ड्रिंक भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है, अब आपका क्रिएटिन 1.5 आ गया, सडनली आपने टेस्ट कराया, तो अब आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, आप डॉक्टर पास जाएंगे, इस स्टेज में उनको एक्चुअल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है, उनका हम बीपी कंट्रोल रखेंगे एक दो मेडिकेशन से, बट हमारी सलाह से वो स्मोकिंग छोड़ देंगे, अल्कोहल छोड़ देंगे, अगले कुछ सालों में अपना वेट रिडक्शन कर लेंगे, तो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर सीकेडी का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो पेशेंट को काउंसिल करना कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, अगर उसको कुछ चिंता नहीं होगी तो नहीं अपनाएगा।
0: हेल्दी में क्या कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली आप मना करते हैं, दालें वगैरह या कम करने की सलाह देते हैं?
1: देखिए, सीकेडी के प्रोग्रेशन में प्रोटीन इंटेक का काफ़ी रोल रहता है, तो हम लोग सीकेडी पेशेंट को थोड़ा सा प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करने बोलते हैं, बंद करने को नहीं बोलते।
0: मान लीजिए उसको डायबिटीज है तो कार्बोहाइड्रेट वो ले नहीं सकता, प्रोटीन आप मना करते हैं, ले दे के फिर घी बचता है और घी तो
1: जी मना नहीं करते ना कार्बो जीने के लिए तीनों चीज़
0: जरूरी है सर,
1: मना नहीं करते हैं।

0: पर वो एक डाइटिशियन की सलाह से उनकी जो डेली की एक्टिविटी है उनकी जो नीड है उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रोटीन थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, और उस हिसाब से रेशियो पर अपना फैट का रेशियो उनका मेंटेन किया जाता है।
1: बिल्कुल, जो जैसे वेजिटेबल सोर्सेज से प्रोटीन मिलता है वो ठीक है, आप जैसे एग वगैरह लेते हैं तो उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसकी बजाय अगर आप दालें रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लें तो वो बेहतर है और आपके गुर्दों के लिए भी वो ठीक रहेगी।
0: देखिए सीकेडी में जो प्रोटीन डाइट है वो 0.8 ग्राम पर केजी पर डे है, नॉर्मल जो रिकमेंडेड इंटेक है वो 1 ग्राम पर केजी पर डे है, मतलब सिर्फ 20% आपको करना है। तो सीकेडी में प्रोटीन का जो इश्यू है वो इंडियन डाइट में इश्यू नहीं है, हमारी डाइट मेनली वेजिटेरियन डाइट है, इंडियन डाइट वैसे ही डेफिसिट होती है,
1: और
0: अगर इंडियन डाइट
1: प्रोटीन
0: को देखा
1: ज्यादा
0: जाए तो
1: होता ही नहीं है उसमें।
0: हाँ 1 ग्राम होता ही नहीं है। तो इनफैक्ट हम तो मैं बहुत से पेशेंट को बोलते हैं एनालाइज करने वाले कि आप पनीर अलग से खाइए कि आपको प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। जो प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करने का जो कंसेप्ट है वो वेस्टर्न डाइट में है, क्योंकि उनका स्टेपल फूड मीट है, वो सुबह शाम 1.5 किलो मीट खा लेते हैं, अब 1.5 किलो मीट खाने के तो बहुत प्रोटीन जाएगा।
1: अपने यहाँ तो जो नॉनवेज खाने वाले भी हैं वो भी ओकेजनल महीने में एक दो बार वाले हैं, तो मूलतः हम शाकाहारी लोग हैं और हमारे यहाँ खाने पीने एक आहार कोई समस्या नहीं है, खास करके गुर्दों की
0: जी
1: बीमारी के
0: सीकेडी
1: संदर्भ में।
0: पेशेंट में स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में जो सबसे जो ज़्यादा दिक्कत देता है वो है नमक। इंडियन पॉपुलेशन के अंदर नमक इंटेक और जो फैट इंटेक है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा दिक्कत देता है बजाय प्रोटीन के।
1: कई लोग नमक का जैसे आपने मना किया तो वो उस पर चले जाएंगे सेंधे की तरफ, तो वो भी आप मना करेंगे या इसकी
0: देखिए
1: जगह आप सेंधे की तरफ चले जाएं वो ठीक है?
0: सेंधे नमक और नॉर्मल नमक फर्क होता है कि सेंधे नमक में सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज्यादा होता है, तो ये सीकेडी में उल्टा पड़ता है कि सीकेडी पेशेंट पोटेशियम को बिल्कुल भी मुश्किल से निकाल पाते हैं, तो उनमें सेंधा नमक पोटेशियम को सडनली बढ़ा सकता है, तो सेंधा नमक हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं सीकेडी पेशेंट को कि सेंधा नमक ना लें,
1: तो
0: नॉर्मल
1: सादा
0: नमक कम कर
1: आयोडाइज
0: दें।
1: भी ठीक है और
0: जी
1: उसको भी कम ही लेना है आपको,
0: जी
1: है ना? तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़ साहब, आज दुर्भाग्य से कम समय रह गया हमारे पास
0: जी
1: और हम महत्वपूर्ण बातों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर पाए, इस बात का हमें संतोष है। अगले प्रोग्राम में हम थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुर्दे का स्वास्थ्य सीधा आपका अपना स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य कैसा है तो आपके गुर्दे का स्वास्थ्य देख लीजिए, वो आपका स्वास्थ्य है। तो इस महत्वपूर्ण अंग पर, और अब तक एक तरह से ये अनसंग हीरो है, ये हमारे शरीर में इसको चैंपियन का दर्जा मिला हुआ नहीं है, लेकिन असल में काम इसका चैंपियन का है, क्योंकि ये 24 घंटे जैसे हृदय काम करता है या हमारा यकृत काम करता है, उसी तरह का महत्वपूर्ण अंग है ये गुर्दा। और डबल इंजन सरकार है, वैसे तो दो गुर्दे होते हैं, बट ये कि खराब होने शुरू होते हैं तब एक साथ दोनों ही होते हैं, तो
0: जी
1: दोनों इंजनों में एक साथ ही समस्या आएगी। इसलिए आप ये समझिए कि लोड लेने के लिए दो अंग हैं, लेकिन जब खराब होंगे तो एक साथ ही होंगे, इसलिए आपको एक अंग समझ के ही काम करना है इसे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए।
0: धन्यवाद बुलाने के लिए।
1: 102.1 FM रेडियो सेंसिटी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक लीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून इन किया है एफएम सन सिटी चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया।

एफएम सनसिटी सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज की इन्फोटेनिया में है बहुत सारी काम की चीजें, लेकिन आज इन्फोटेनिया में है बस एक ही टॉपिक। और वो है जोधपुर की शान, भोगी शैल परिक्रमा। शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
4: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया और चैनल आपने ट्यून इन किया है FM सन सिटी। आज हम बात करेंगे भोगी शैल परिक्रमा की, और इस परिक्रमा को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यह केवल एक पैदल यात्रा नहीं, बल्कि मारवाड़ की लोक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का एक जीवंत प्रतीक है। यह परिक्रमा जोधपुर के चारों ओर स्थित भोगी शैल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द की जाती है, और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। क्या है इस यात्रा का ऐतिहासिक महत्व, और भी बहुत सी बातें जानेंगे आज के इस जोधपुर इन्फोटेनिया के विशेष अंक में।

और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। सात दिन की इस यात्रा में करीब 110 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। क्या है इसके महत्व और क्या बदलाव समय के साथ इस यात्रा में आए हैं, जानेंगे इस गीत के बाद।

श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में यातायात के बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, तो सभी लोग हरिद्वार या दूरस्थ जो तीर्थ है वहां तक जा नहीं पाते थे। ऐसे में लोगों ने अपनी श्रद्धा और अपने जो परिवार के सदस्य थे उनके अंतिम संस्कार के लिए भोगीशैल पहाड़ियों में स्थित अरना झरना और अन्य कुंड को ही तीर्थ मान लिया और यहीं पर उनके अंतिम क्रियाएं जो है वो उन्होंने करनी शुरू की।

श्रोताओं, लोग सदियों से ये यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसे एक विशाल और सुव्यवस्थित आयोजन का स्वरूप मिला वर्ष 1926 में, जब हिंदू सेवा मंडल ने पहल की। ये साल इस व्यवस्थित यात्रा का 100वां वर्ष है।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं, इस परिक्रमा का आयोजन अधिक मास में होता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार हर तीसरे साल आता है। और वर्तमान यात्रा की बात करें तो ये यात्रा 25 मई 2026 से शुरू हुई। इस 110 किलोमीटर लंबी और 7 दिन की यात्रा के अगर मुख्य पड़ाव की बात करें तो ये यात्रा घंटाघर में हिंदू सेवा मंडल के कार्यालय से शुरू होती है और यात्री जो है वो शहर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करके भाटी सर्किल पर विश्राम करते हैं। ये पहले दिन की यात्रा है और इसमें करीब 5 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। आगे कौन कौन से पड़ाव है जानेंगे, लेकिन गीत सुनते हुए चलते हैं।

0: श्रोताओं, पहले दिन की यात्रा पूरी करके जब ये यात्रा भाटी सर्किल पर विश्राम करती है, तो दूसरे दिन यहाँ से शुरू होकर के ये यात्रा चौपासनी की तरफ जाती है और दूसरे दिन यात्री करीब 14 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। चौपासनी से आगे 10 किलोमीटर की यात्रा करके ये यात्रा पहुंचती है बड़ली भैरव जी के मंदिर प्रांगण में। चौथे दिन ये यात्रा दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए बैद्यनाथ महादेव धाम पालड़ी तक जाती है, जिसमें 18 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है और ये एक दिन में इस यात्रा में किया जाने वाला सबसे लंबा सफर है। पांचवें दिन बैद्यनाथ महादेव धाम से बेरीगंगा तक की यात्रा की जाती है और इस दिन का सफर रहता है करीब 14 किलोमीटर का। छठे दिन ये यात्रा ऐतिहासिक मंडोर उद्यान पहुंचती है। बेरीगंगा से मंडोर की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। अंतिम दिन यात्रा 15 किलोमीटर का सफर तय करके वापस घंटाघर पहुंचती है और घंटाघर पहुंचने के साथ ही यात्रा संपन्न हो जाती है। ये है भोगीशैल परिक्रमा के 7 दिनों का सफर और इसके सारे पड़ाव।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, इस कमर्शियल अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, जहां भी इस यात्रा के पड़ाव होते हैं वहां पर विश्राम के साथ साथ रात्रि कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है और पूरे रास्ते श्रद्धालुओं को जोधपुर के स्थानीय लोगों की खूब सेवा मिलती है। यात्रियों और स्थानीय लोगों की आस्था है कि इस यात्रा को पूरा करने से सभी नदियों में नहाने का व 68 प्रमुख तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस यात्रा में राजशाही परंपरा का भी निर्वहन किया जाता है। जोधपुर के पूर्व राज परिवार का इस यात्रा से पुराना नाता है। परिक्रमा की समाप्ति पर उम्मेद भवन पैलेस में सभी श्रद्धालुओं का पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया जाता है और यह है हमारे मारवाड़ की अपनायत।

श्रुतम भोगीसेल परिक्रमा यानी कि ये यात्रा हमारी सामाजिक एकता का प्रतीक है, जहाँ जात पात ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। 30 से 40 हजार या श्रद्धालु एक दूसरे से कदम ताल करते हुए चलते हैं। साथ ही ये यात्रा पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है, तो दुनिया को ये भी दिखाती है कि कोई भी विकट परिस्थिति हमारे हौसले कमजोर नहीं कर सकती।

श्रोताओं, ये था आज का जोधपुर इन्फोटेनिया। मैं था आपके साथ आपका रेडियो राही कल्याण विश्नोई। अनुमति दीजिए, हम फिर मिलेंगे।

0: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे जोधपुर इन्फोटेरिया। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना

0: जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित है और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान।

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत जरूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना। हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके

लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स, कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता है जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हंसी नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है। तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ है या जो हमारी जिंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीजों का शुक्रिया करें जिंदगी

में हर रोज, हर सुबह सबसे पहली चीज. और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों का और गिनते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है. हमारे साथ ही लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है, ऐसा कहूंगी मैं. और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है, श्रृंगार रस में सरोवर है. और बहुत सारी शब्द जो इनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है. बहुत बहुत धन्यवाद. जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत जरूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे. चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ. लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना. मीना बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है. आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाजार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं. मुझे आपके संदेशों का इंतजार है. आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत.

आकाशवाणी रिया गूंज आपारे 90 साल री यात्रा पूरी कर रही है 8 जून 2026 ने। 9 दशकारों ओ सफर सिर्फ तरंगिया रो सफर ही नहीं हो, अपने करोड़ा दिला री धड़कन, बदलती संस्कृति और अनगिनत यादा रहो। आप रिजाद हुई आवाज और शब्द में प्योर आपारे सागे दिला तक पहुंचाने रो काम करो अपना प्यारा सम्मान ने उद्घोषकर। और जिका पर्दे रे पीछे रेर कितना ही लोगों रा मन है जिका मोलियो, जिका दिखाई तो नहीं दिया पर फिर भी अपने जीवन रा अपने परिवार रा हिस्सों बन गया। तो 90 साल री सफरी यादा ने ताजा करने वास्ते आज एक विशेष कार्यक्रम लेने आया हाँ आवाजारो झरोको। वो आवाजारो झरोको खोला ला पर थोड़ी देर बाद।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सुगणगौर और आज आप आगे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रेडियो जगत की बेहद सम्मानित और सशक्त आवाज कमल शर्मा जी, जिनका वर्ष तक आपकी आत्मीय आवाज और सहज अंदाज से श्रोताओं वाले दिल में जगह बना चुका है। तो सर आकाशवाणी जोधपुर इन कार्यक्रम में आप रोगणे मानसो स्वागत है।
1: अरुणा जी आपको नमस्कार, जोधपुर के आकाशवाणी परिवार को मेरा नमस्कार और जितने भी श्रोता हैं आकाशवाणी जोधपुर के उनको भी हृदय से मेरा नमन शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी ने 90 वर्ष जी की गौरवशाली यात्रा जी की है बा पूर्ण हो रही है और आप जी का है आकाशवाणी ने इन यात्रा ने बहुत ही करीब सु देखा भी हो और जिया भी हो, तो इन अवसर पर आप कहीं कहना चाहोला?
1: देखिए भारत में रेडियो प्रसारण की इसमें निस्संदेह एक गौरवशाली संस्था है, बल्कि रेडियो प्रसारण की मातृ संस्था है आकाशवाणी। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज जिस मुकाम पर हमारा देश है, विकास की जिस पड़ाव पर है, उसकी साक्षी रही है आकाशवाणी। और चूंकि अगर हम प्राइमरी चैनल की बात करें आकाशवाणी के, तो उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। तो आकाशवाणी ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाई है। आज तो क्या है कि एक सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास में हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने की नई नई जानकारियां हम तक पहुंचती हैं, लेकिन एक समय था कि जब शहरी अगर हम श्रोताओं को छोड़ दें तो हमारे जो कस्बाई या दूर दराज के हिस्सों में रहने वाले लोग थे, हमारे वनवासी भाई बहन, उन तक जानकारी पहुंचाने का, मनोरंजन का एकमात्र साधन था रेडियो, और सहज सस्ता सुलभ माध्यम। तो इसके जरिए सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी जानकारी उन तक पहुंचाना, जो उनके हित की योजनाएं थी, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूप से जागृत करना, हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां भी रही हैं, उनके प्रति लोगों को आगाह करने के लिए जन जागरण में आकाशवाणी की एक बहुत ही महती भूमिका रही है, अमूल्य योगदान रहा है उसका। और अगर हम भारत में हरित क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति की बात करें, तो उसमें भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि आकाशवाणी का सरोकार अपने हर आयु वर्ग के श्रोताओं से बहुत गहरा है, चाहे वो हमारे युवा हों, उनके लिए युवाणी कार्यक्रम होता है, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए, गृहणियों के लिए, बच्चों के लिए, और हमारे किसान साथियों के लिए, फौजी साथियों के लिए आकाशवाणी ने अहर्निश उनकी सेवा की है, उनको महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध करवाया है अभिव्यक्ति का, और साथ ही साथ देश में सुगम संगीत की, लोक संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, उपशास्त्रीय संगीत की जो प्रतिभाएं हैं, साहित्य जगत की जो प्रतिभाएं हैं, उनको सशक्त मंच प्रदान किया है। तो आकाशवाणी ने, क्योंकि हमारे देश में एक सांस्कृतिक वैविध्य है, कई भाषाएं हैं और कई मत हैं, मतांतर हैं, उनके बीच में ये जो सांस्कृतिक वैविध्य है इसको बनाए रखते हुए आकाशवाणी ने देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोया है, और अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को उसने सार्थक किया है, और ये यात्रा निर्बाध रूप से आज भी जारी है। और सबसे एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, शायद पूरे विश्व में आकाशवाणी की जो परिचय धुन है वो शायद अपने आप में सबसे नायाब है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने वर्षों से उसका आकर्षण आज भी खत्म नहीं हुआ, इतने वर्षों में, और आज भी लगातार वो प्रगति के सोपान तय कर रही है, और वक्त के साथ आकाशवाणी ने अपने आप को बदला है, नई तकनीक को अपनाया है, और सतत श्रोताओं की सेवा में आज भी वो समर्पित है।
1: बिल्कुल सर, आपका जी का विचार है बहुत ही सुंदर विचार है। सर आप आकाशवाणी बहुत एक लंबे समय तक जुड़ा रहा हो, तो कोई इस अनुभव या कोई किस्सो है जो आज भी आपने याद है?
0: ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, और जैसा कि आपको मालूम होगा आकाशवाणी में बहुत समय तक मैं रायपुर के केंद्र पर कार्यरत था, उसके बाद में 1992 में विविध भारती आ गया, तो विविध भारती में मैंने भारत का पहला जो इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम था उसको डिजाइन किया था, उसका नाम था हेलो फरमाइश, और वो एक मेरा बड़ा ही यादगार अनुभव था, क्योंकि पूरे देश से, बल्कि देश के बाहर से लोग श्रोता जो थे उस कार्यक्रम के लिए फोन करते थे, उनसे एक व्यक्तिगत, जैसे कहते ना, आत्मीय संबंध स्थापित होता है, आप देश के अलग अलग भागों से लोगों से जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों से परिचित होते हैं, आपको पता चलता है कि हम कितने समृद्ध हैं सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, हर लिहाज से। तो एक तो वो मेरा बड़ा अनुभव बहुत प्यारा रहा उसमें। इसके अलावा जो दूसरा, एक आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो हमने एक कार्यक्रम डिजाइन किया था, उसका नाम था हेलो कारगिल, और जब तक कारगिल का युद्ध चला तो हम अपने सैनिक भाइयों को उनके लिए कार्यक्रम करते थे, और पूरे देश को हमने उनसे जोड़ दिया था, उनकी हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम होता था। और उस कार्यक्रम को करते हुए मुझको याद है कि जयपुर से कोई फोन कॉल आई थी, और उसमें हमारे बहुत सारे जो घायल सैनिक थे उन्होंने फोन किया था, और उनका जज्बा इतना ऊंचा था कि फोन रखने के बाद मैंने उनसे पूछा कि इसके बाद बातचीत जब खत्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, बोले साहब जैसे हम ठीक होंगे

हम फिर से लड़ना चाहेंगे और आपका ये जो कार्यक्रम है ये हमें बहुत हौसला देता है और ऐसा लगता है कि पूरा देश हमारे साथ है। तो उस चीज ने बहुत छुआ क्योंकि हमेशा मुझे लगा कि हमारे देश के असली जो नायक हैं, असली हीरो हैं, वो हमारे फौजी भाई हैं। तो उनकी सेवा करते हुए मुझे लगा कि मेरी नौकरी सार्थक हो गई और जब युद्ध समाप्त हुआ तो

0: और जब युद्ध समाप्त हुआ तो फिर उस कार्यक्रम के स्थान पर हमने एक और कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम था हेलो, उसका नाम था जयमाला संदेश। उसमें फौजी साथियों के परिवार के लोग हमें चिट्ठियां लिखते थे, उन चिट्ठियों को मैं पढ़ता था। रविवार को वो कार्यक्रम आता था और उस कार्यक्रम में चिट्ठियां पढ़ते हुए हर बार मेरा गला जो है रुंध जाया करता था। ऐसी मार्मिक हृदय स्पर्शी चिट्ठियां होती थी। तो प्रसारण में तो आप बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम आपकी स्मृतियों में हमेशा के लिए रच बस जाते हैं और आपको लगता है कि आपने अपने जीवन को सार्थक किया ऐसे लोगों की सेवा करते हुए। और एक प्रसंग जो हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ, और ये घटना मैंने कई जगह सुनाई भी है कि मुझे याद है हमारे एक मित्र हैं अशोक सोनावणे, जो दिवंगत हो गए हैं, नहीं है, वो उस समय एक कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे और किसी महिला श्रोता ने उनको फोन किया कि मैं कमल जी से बात करना चाहती हूँ। तो मैंने बात की, वो एक त्रिवेणी कार्यक्रम उन्होंने सुना था जिसमें मैंने जीवन के संघर्ष की बात की थी और कहा था कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों जीवन से संघर्ष करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी, जीवन से निराश हो चुकी थी, लेकिन आपका यह कार्यक्रम सुनने के बाद में मैंने मरने का इरादा त्याग दिया और मुझे लगा कि मैं जीवन से संघर्ष करूंगी। और उस एक कार्यक्रम ने मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा इनाम है एक ब्रॉडकास्टर के लिए कि आपका कोई कार्यक्रम किसी के जीवन को बदल दे।
1: बिल्कुल सर, आपका अनुभव और प्रेरणा की यात्रा है और सुनना तो सुन में बेहद ही विशेष रही हो। और इन अवसर पर आकाशवाणी की पूरी टीम जी की है आप बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है कि आपसे बातचीत करी और इतनी सुंदर बातचीत सुन पर मांडोगा ने भी बहुत सारी प्रेरणा मिली। आप बहुत बहुत आभार।
0: मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी जोधपुर को, आपको और हमारे वो साथी जो आकाशवाणी में कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको, और जो हमारा विराट श्रोता परिवार है जो हमारी असली ताकत है, जिन्होंने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया और उनका मनोरंजन करते हुए मैंने एक ब्रॉडकास्टर के रूप में इतनी लंबी यात्रा की तय की, उनको भी हृदय से मेरा नमन और अनंत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद,
0: शुक्रिया।

0: रज को राम राम, करण रज को अंदाज है, विष्णु ही लोक जी का है। आपने पहचान गया है कि आज कौन है, आज बिल्कुल अपारिश्ता का है गोविंद त्रिवेदी जी सर। तो सर आप रोज को अंदाज जी को हो, भोल जी रोज को किरदार जी को हो, वो बड़ा ही अनोखो हो।
1: आराधना जी देखो जाके जतन जाप करिया और दूसरा मार तो कहीं है जाके देखो बोलिया अग्नि प्योड़ी भाई कोई काम करो तो आप एकदम मन नु काम करो तो मन नु लगान काम करियो मेहनत करना करियो और एक मैं ही नहीं सा दुनिया में कोई वो भले मेहनत करने से कोई काम करे तो उन फल मिले ही बढ़िया इनमान कोई दो राय नहीं कोई सक्षम सब वो नहीं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपरी जी की सीख है, आप बहुत ही सुंदर सीख है सर। रेडियो पर आपरी आवाज जी की है साला तक गूंजती रही।
1: सही बात है सर, जतन कही भगवान कह के नहीं मौको दियो एड़ो आराधना जी। सही बात कहूँ तने वो कोई भागशाली रह नहीं उन्हें के तकदीर मान लिखेड़ रहे के भाई इतना सोता और स्नेह प्रेम मिले आपने मेरे पीछे बैठ बात मतलब करो और सुबह बड़ो एक इनमान जी को है कि नहीं मजो है के आप जिन टाइम रेडियर मान प्रोग्राम करो के तो कई भाई सैन जी कहे भाई यूं आप आपने यूं ऊपर समझे तो ऊपर नहीं समझने अपन तो कह के नहीं सोता और भेड़ा बैठ कोई बात करता है कि नहीं वो भाव मन में लान के भाई अपन हम बैठा है सोता और वहाँ होता ही करनी है वहाँ बात मंत्र करनी है तो वो भाव लान बात करो तो आग लगी घोड़े के उन इलाके वहाँ पे तो मार भी चल रही है वो कोई न कोई ऊपर लो नहीं इलाके।
0: तो सर तो आज आप श्रोताओं से फिर तू जुड़ रही हो तो आज आपने किया लाग रही
1: हो। ओ हो हो हो राधना जी मत पूछो लागे कोई जने के राम जी मिली आए मन तो श्रोताओं जिनसे बात करो के तो मैं लागे भाई अपन जी तभी प्रेमी आदमी हूँ बात मंत्र करो तो आप फोन में पता पो गए फोन बंदे तो एडी कैमरा मान विकास करने जी का पहचान होने की नहीं वो नहीं बाढ़ जो होता हमारा प्रोग्राम जिन टाइम हो तो वही बाढ़ जो होता हमें आज लिखा रोड़ हूँ मैं बाढ़ जो कि भाई पैसा कोई होने में नहीं तो मैं सरकार रिटायर करती हूँ करती हूँ कौन होने बड़े बड़े भाई 60 वर्ष के ऊपर होते ही आपको रिटायरमेंट घर पे जाना है तो हम आ गया बैठ गया अपन मन में तो रही है साहब आठी उम्र कट मजदूरी करी आकाशवाणी में मैं घर बैठा हूँ तो एक हेमो को दियो नहीं हो बढ़िया मन बहुत जोरदार लग रहा है आज भाई हूँ बिन मिल बैठ बात मतलब करने मौको मिलो है तो मन तो लगे राम जी मिलिया सही बात है।
0: तो जिकडम सर आप काम करता बिन समय एक रेडियो हुई करतो और आज रोज को आधुनिक डिजिटल रेडियो है तभी मैं आपने कई बड़ा जो को बदलाव जो को आपा के वहाँ देखने मिले आपने
1: क्यों है आराधना जी देखो के रेडियो पहली जिन टाइम होता कह जन तो मैं कहूँ नहीं के टेपो थर दे की वीडियो ही सारी टेपो मोटी मोटी आती एक अटिनो चलती नोटिन खत्म होती हूँ तो वो बैक वाली मशीन कहता के उन्हें बिन माता काम होता जो उन्हें जी की रिकॉर्डिंग होती तो वह एकदम क्वालिटी एकदम जबरदस्त होती जिसका नाम इतनी बढ़िया कहते नहीं आवाज डिजाइन रंग रोग निर्माण जोरदार हो तो हमें आजकल यूं थे कहो कि भाई आधुनिक कर जरा कई रेडिया खुल गया है कर गया है हमें तो मुंबई रिमान आप रेडिया हिंदुस्तान आकर हो सको कोई स्टेशन छोटा मोटो हो तो एक आप आज देख लो कि जैसे आपने क्वालिटी चीज है बढ़िया एकदम वह चीज आपने थोड़ी मिला लान जैसे आपने घनी चीजें मिल जाएगी उस क्वालिटी में फर्क पड़ जाए तो अब डिजिटल जी का है डिजिटल रिमान आप ठीक है मन पसंद आप चाहे जी को हूं लो कर लो वह बात अलग है उन टाइम जी की रिकॉर्डिंग होती है उन टाइम जी का मेहनत कर प्रोग्राम तैयार करता है मशीन माते भाग दौड़ रहती जबरदस्त स्टूडियो में अड़ा जमा जम रौनक रहती बस मत पूछो
0: सर आपने बहुत समय लागतो वाला कार्यक्रम तैयार करना
1: हाँ टाइम घणो लागतो साउंड टाइम तो जियो कोई अब नाटक मैं तो कई कह नहीं आप जियो लोक लहरी प्रोग्राम हो तो जितरियन ले ना तो घणो पसंद करिए लोग ला तो मैं संजय ब्यास जी अपने प्रश्नोत्तरी हरू करी मैं राजस्थानी में प्रश्न पूछता हूँ हिंदी में पूछता तो लोग घना पसंद करी फिल्म आवे कि नहीं अपने फर्दर मत देखो जी की सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल की फिल्म हो 3 घंटे री
0: बिल्कुल
1: मैं भी मेहनत कर करा 15 मिनट में सार निकालना बयान होना होता रेडियो में 15 मिनट में पूरी फिल्म आप पिक्चर एकदम होनी चाहती तो मेहनत करता साउंड टाइम आ तो मैं तो अब देखो साहब मारी जी का पुराना हक नहीं सीनियर अलाउंसर वो ही बाकी तो मारे कट है बैकग्राउंड रहे कह के नहीं अंग्रेजी में कह नहीं बैकग्राउंड मारो कोई वो खास हो नहीं कला जरूरी स्टेज नाटक दूजा करिया सब करिया पर ही क्या तुम्हारी जी का सीनियर अलाउंसर आ बटा अधिकारी जी का अधिकारियां ने मानी गुण घना पहली आएगी मारो एक छोटा सा उदाहरण दू, एक प्रोग्राम बारू रिकॉर्डिंग करने लेना आया।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर। आकाशवाणी जोधपुर इन विशेष प्रस्तुति में आज आपारे सागे फोन लाइन पर जुड़ गया है एक अनुभवी वरिष्ठ उद्घोषक जिका जद रेडियो पर राम राम कहता तो राम राम बोलने बोलो अंदाज इतो निराड़ो हो तो कि श्रोता जिका है वे खुद ही समझ जानता कि आज कार्यक्रम में कौन आया है।
1: राम राम साहब नमस्कार सब हुनवाड़ में बोल दीरा गणेमान राम राम नमस्कार।
0: बिल्कुल सर आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में आप घने मान से स्वागत है और श्रोता जी का है

0: मशीन ले जाता है रिकॉर्डिंग री, वहाँ कोई सेल बैटरी खत्म हो गई कहीं टका ही हो ढीली पड़ गई आवाज एकदम यो बिगड़ गई रिकॉर्डिंग करने लाया आप उठे तो हूं नहीं सकिया बट आने कंप्यूटर में गाल ने चेक करिया तो एलो सा आवाज तो इन तो हमें इन करो सुधारो अपन आवे नहीं
1: सही बात
0: वो पैसा दियोड़ प्रोग्राम पैसा दे रिकॉर्डिंग करने गया तो जिन पैसा लियोड़ा है अपने तो काम तो करन देना पड़ी तो मैं क्यों पता हाथ ऊंचा कर गया काम चल नहीं है मैं तो अधिकारी जी का नहीं वह सब बैठ बैठा कंप्यूटर में घाल की कर और करना भयंकर माता बड़ी 15 मिनट प्रोग्राम हो उनमें 2 दिन लग गया रह रहे मैंने आवाज ने सेट करनी है बहुत माता बड़ी काम है तो पहली मेहनत खूब होती सा मेहनत तो करता क्या जानी श्रोता पसंद करता है श्रोता और स्नेह प्रेम अपार मिलियो इनमें कोई दो राय नहीं
1: बिल्कुल सजद आप काम करता है भोल जी रो के वे नाम जो है खूब सुना करता लोग बड़े चाव सो जैसे की अब आप राम राम की और भोल जी की हो तो लोगों ने पता चल गयो कि अच्छा गोविंद सर है जिका आया है तो आपने उसको नाम मिलियो वो किन प्रकार मिलियो इन दो मतलब अब भोल जी नाम क्यों मिलियो आपने
0: इनमें एक कहानी है वो जोरदार पहली कही है अपना आकाशवाणी मन ने उम जी तो अपना प्रोग्राम करता पे कही है समय रात खत्म हो गया प्रोग्राम ओम जी बोम जी जिन टाइम नहीं रहा प्रोग्राम एकदम होने आड़ो गया तो अपने आकाशवाणी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार राम साहब बहुत गुणी और बहुत विद्वान आदमी सा और मैं कहूँ के मैं हिंदी हीरा प्रोग्राम करता हूँ तुम वाला हिंदी प्रोग्राम में रह के वो तो पढ़िया को करी है इन मारवाड़ी आलम देखो तो मैंने एक दिन बुलाया उनके कहा आपको हिंदी का प्रोग्राम छोड़ के राजस्थानी का करना है मैं कहा बाप भी मन मत फंसा हुआ राजस्थानी प्रोग्राम में चौपाल राम राम भी मौनी है हिंदी प्रोग्राम में बढ़िया कर दू आपको तो गुणी आदमी है मारे कहे हूँ तू 1 महीना कर ले और जे अगर तन पसंद नहीं आवे महीनों पर तो मन कह दीजिए पाठो मैं तन पास थारे हिंदी में हम तुम करण गाना बजी जैन मौज कर दे तो मैं क्यों मैं बड़ा आदमी है मैं साहब है कह दियो है तो मैं कहीं करा मनमार राजस्थानी में घुसियो राजस्थानी प्रोग्राम राम राम शाह नमस्कार आप सब ने बहुत जीरा खड़े मोहन राम राम ओ करियो 4-5 दिन हफ्ते पर हुए उन टाइम तो फोन ही आता चिट्ठिया ही आती है पे कह के भरमार चिट्ठिया आने लगी खूब फोन आने लगा बोल जी कौन है भाई ये बोल जी कौन है एक हफ्तर मानी मन रिजल्ट था पड़ गया भाई लोगों का स्नेह प्रेम बोल जी ने खूब मिल गया महीने पर खोच लिया मैं महीने पर पे अनिल राम साहब मन बुलाया कि भाई थारे सो पत लगा तो हिंदी में थारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं मैं चलन दो सा हमारा बढ़िया काम है ठीक है चलन दो तो अनिल राम साहब जी कहे भाई मैंने जिन टाइम कहा नहीं कि भाई तन बहुत देर काम करना है राजस्थानी में करना है तो वह एक बात कही कि थारो रोल है कि एकदम अनपढ़ छोट गंवार आदमी है बिल्कुल पढ़ियो लिखने नहीं है स्कूल लारवाड़ वो निकल गयो व्यवहारिक ज्ञान जो गाँव रमान कही देना है नहीं आराधना जी बढ़िया बढ़िया नहीं हुए पर गुणी हुए बहुत
1: गुणी हुए सही
0: तो थार मान तो गुणी नहीं है और भी करेक्टर है नहीं जी को वो गुणी भी नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है बस वो रोल करना है थाने फिर मैं क्यों मारे वास्ते एक बहुत बड़ो चैलेंज गया अंग्रेजी वालों चैलेंज हो मैं मारे तरफ अच्छी करूँ खूब मेहनत कर करा निभाया सा मन तो मारवाड़ी राजस्थानी बोलना कहीं गए नहीं बोले तो हूँ कर बात तुझे करना होता है यार तेनों शब्द पकड़ तो मैं ओ गाँव वाला यूं बोले ओ गाँव वाला यूं बोले किताब कहाँ पे वह किपात के तो वह शब्द नियर कन उठा उठा उठा उठा मार को चरित्र मन डालिया प्रोग्राम करियो और वो बोल जीरो जिन टाइम किरदार एकदम सोता और बहुत स्नेह मिलियो बहुत प्यार तो मारे राम साहब भी बहुत ही राजी हुए अनिल राम साहब और वह रिसर्च करी इन मत PhD करी स्टॉक करेक्टर एंड मास मीडिया की पुस्तक लिखी हुई है तो वह इन करेक्टर ने देखने को करेक्टर जी को है इन ढंगो हिट होया तो इन माता पूरा हिंदुस्तान ने जीता बढ़िया बढ़िया करेक्टर करता कि नहीं स्टॉक करेक्टर कह जी ने मियन माता रिसर्च कर ने PhD करी डॉक्टर बनिया पुस्तक लिखन दिल्ली रवान आज भी वह चले अपने कोर्स में है बता है
1: तो सर चलता चलता एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आकाशवाणी का शानदार 90 साल जिका है पूरा हो रहा है तो इन विशेष अवसर पर आप कहीं
0: कहना चाहोगा हजारों पूंजी है आकाशवाणी है रोला नहीं रोला मैं रहूला नहीं रहूला रेडियो करेला तो रेडियो बालपण है हाल 90 बरस होया क्या होने वाला है नी तो वो बालपण है बालपण अरमान ने इतना रंग रोगन करिया है पूरी दुनिया अरमान ने आज हिंदुस्तान अरमान जाएगी गई आखी दुनिया अरमान रेडियो री के बड़ू है कटी जाया करे तो रेडियो उन्होंने आप समाचार उन ले समाचार ही आ जाए संगीत ही आ जाए शिक्षा याद है सब बातों क्यों जिन्हें जड़ो सही से नहीं बैठो इन मन मिल जाए तो रेडियो तो खूब

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सुगनगौर और अब बात कर रहे हैं फोन लाइन के माध्यम से रेडियो जगत री एक ईसा व्यक्तित्व से कुछ नई शुरुआत भी करी और लाइव कंसोल संभालते हुए बहुत कुछ नया बदलाव भी कर और सागे ही सागे श्रोताओं रदिला में एक अमिट पहचान जिके है वह भी बनाई। तो आज आप सागे है वरिष्ठ अनाउंसर लक्ष्मण साधु जी। तो आकाशवाणी जोधपुर गणगौर में आप रोहित हरक सो घने मान सु स्वागत है सर।
1: सबों पहले तो मैं हमारा हेचालु श्रोताओं ने राम नाम कहनी चाहूँ। एक लंबे अरसे पचे श्रोताओं मुखाति भूरी हूँ, बातचीत कर रही हूँ, मैंने बहुत ही अच्छा लाग रही
0: है। सर हर शुरुआत जी के बाद छोटा छोटा कदमा सो या करें और आपकी आवाज जी की सालों तक लोग जी का है रेडियो जगत में सुना ही। तो सबसे पहले आप बताओ कि आप लोग जी को पहलो रेडियो से जुड़ाव जी को वो कद हुई हो और किया हुई हो।
1: 1981 की बात है जब मैं जोधपुर स्थानीय अखबार में काम करता हूँ एज ए पत्रकार। मैंने ठा पड़ी कि आकाशवाणी जोधपुर में कैजुअल भी कुछ जरूरत है तो मैं वटे आवेदन करियो और युवाणी में मारो सिलेक्शन हुआ एज ए कम्पेयर रूप में। तो करीबन मैं 3 साल तक युवाणी कार्यक्रम

0: और फ्रेंड है कई बला, तो पहली बार उन्हें प्रेजेंट करियो और सब अधिकारी वगैरह स्टेशन डायरेक्टर भी होता, असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता, पैक्स भी होता, तो करीबन करीबन स्टूडियो में 5-7 लोगों रो जमावड़ो लागोड़ो हो और सब मारे लारे खड़ा हो और मैं काम करियो हो। अच्छा वो टाइम एडो हो के उन टाइम सीडिया जब शुरू हुई थी उन टाइम पहली एलपी रो दौर चलतो, मतलब जो डिस्क होती वह मशीन माते लाते टर्न टेबल माते और उनमें पिन माते उन्हें बजाव था, तो उन टाइम धीरे धीरे खत्म होते रहे पचे सीडियर दोस्तों हुए, तो सीडियर बीच में गाना रा पीस निकालना या म्यूजिक रा पीस निकालना वो एक बड़ो चैलेंज रो काम हो, लेकिन वो उन चैलेंज ने भी मैं स्वीकार करियो और जैसे पहले दिन वो काम करियो तो सब लोगों ने बहुत अच्छा लगा, उन दिन स्टूडियो में मिठाई भी खाई और पता एक तय हो गयो के लक्ष्मण जी ही एफएम करेला, तो पचे मैंने अनाउंसर ड्यूटी फ्री कर प्रो और मैंने एफएम के वास्ते लगा दिया, जरा मैंने सुबह 8:30 बजे ऑफिस जानू पड़तो और 12 बजे तक कंटिन्यू एफएम करतो और मैंने पचे मैं दूसरे दिन की तैयारी करने पचे घर आओ।
1: तो बहुत सुंदर सुंदर आप बातें हैं जी के बता रहे हो, तो सर जी टाइम आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुआ है तो एक तलवार धार पर चलन जिस होया करे, तो आप बहुत सारा काम है जिको कर चुके हो कंसोल पर लाइव में, तो नई पीढ़ी रा जिका लोग है या जिका बार काम कर रहे हैं बाने आप कहीं कहना चाहोला कि कहीं कहीं सावधानियां रखनी चाहिए।
0: देखो एक अनाउंसर होने नाते तो मैं सब पहली बात आ कहूंगा कि समय आकाशवाणी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर समाचार और टाइम हो रहा है और समाचार आप नहीं ले पा रहे हो, उद्घोषणा आप कंटिन्यू कर रहे हो समाचार माते आ जावे तो वो एक अनाउंसर फेलियर अनाउंसर है। मैं अबार कई बार देखू मैं रेडियो सुनू उन टाइम के जरा कोई स्पोकन वर्ड चल रहा है यानी कि कोई किन इंटरव्यू ले रही है उन्हें काटने विज्ञापन देवे आ मने थोड़ी अखरे बात है, स्पोकन वर्ड रे बीच में काट प्रो विज्ञापन देवनो आ समझदारी नहीं है। समझदारी यह है कि आप कोई गानो चले उन बीच में उन्हें जरा म्यूजिक आवे म्यूजिक में काट प्रो विज्ञापन दे सको।
1: तो कोई रोचक किस्सो हो कभी इन अलावा?
0: हाँ रोचक किस्सो तो हुयो उन टाइम मुकुल गोस्वामी जी ये प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही है एफएम रो, तो एक गानो चलतो फोन इन प्रोग्राम हाथे चलतो तो श्रोताओं बात चलती तो एक मैंने गाना तो पीस ली एक लाइन मिल गई, जैसे ही गानों में फेड आउट करियो और वो मैं फेड इन करियो वो हेलो हेलो, तो मुकुल जी ने वो लागियो क्योंकि श्रोता रो फोन आयो जबकि वह गाना रो पीस हो और वे खूब उन टाइम हसिया भी और बहुत खुश भी होया कि यार ये तू लाया कहाँ से, मैं कि फिर उसमें आगे के बोले फोन किया है तो बात करो फोन किया है तो बात करो ये गाना ने बोला है ना, तो बहुत ही सुंदर लागो मुकुल जी ने भी बहुत अच्छा लागो वे हमारे आन घर में लिया कि यार मजे करती है लक्ष्मण यार तुमने।
1: तो आकाशवाणी रा देखो सर शानदार 90 साल है जिसका पूरा हो रही है, तो आप इन अवसर पर कहीं कहना चाहोला?
0: देखो 90 साल जो पूरा हो रहा है इन वास्ते तो सब पहले श्रोताओं ने शुभकामना के वो श्रोता लोग रेडियो रो पूरो साथ दियो उन्हें सुनियो उन्हें आपने जीवन में उतारियो और उन्हें कुछ शिक्षा भी ग्रहण करी, तो वे श्रोता अगर साथ नहीं देवे तो रेडियो रो और सफर शायद अधूरो रहे। 90 साल जो पूरा हो रहा है उन वास्ते मैं पूरे आकाशवाणी परिवार ने भी शुभकामना दूं और श्रोताओं ने भी शुभकामना दूं।
1: बिल्कुल सर, आज आप से बात कर रेडियो रो के वन एक पूरे सुनहरो इतिहास है जिकने फिर से जान लियो और आपकी बात और आपका सुझाव बेहतरीन काम करने में सहयोग देवेला, तो इन लिए आकाशवाणी जोधपुर पूरे परिवार की ओर से आप बहुत बहुत धन्यवाद है सर।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर विशेष प्रस्तुति और अभी आपने सके फोन लाइन द्वारा जुड़ चुके हैं। तो सर आप रो घने मानसो कार्यक्रम गणगो रेमाए स्वागत है।
1: हाँ राम राम आराधना जी।
0: सर आपकी आवाज हूँ लोग का पहचान गया है कि आज तो धन जी है यानी कि धन्ना राम चौधरी जी सर आज अपने सागर है। सुनेरा 90 साल जी का है पूरा हो रहा है तो इन ऐतिहासिक मोड़ पर जुड़ रहा होता आज आपने क्या लागे।
1: देखो आराधना जी आकाशवाणी एक एडो माध्यम है जिको की जनता ने ठीक जो है घर घर तक पहुंचने वालो माध्यम है। 1981 में आकाशवाणी जोधपुर जुड़ियो हो और शुरू में तो वैसे युवाणी कार्यक्रम रे माध्यम से भी मैं कार्यक्रम देवता और उन बाद मैंने 1986 सिमड़ी गूंज कार्यक्रम है ना उन मैंने पहली भूम जी और ओम जी रे नाम सीधा जी का के नारायण सिंह भाटी तो भूम जी बनता है कान सिंह राठौड़ा जी को ओम जी बनता है तो जो उन कार्यक्रम में भी मैं खुद जो है फते प्रस्तुति देवन लाग गया और उन बाद मैंने जो सीमाड़ी गूंज और खेती बाड़ी कार्यक्रम अलग अलग होता और जो खेती बाड़ी कार्यक्रम तो मैं और एक चौधरी भाई करेक्टर रूप में मैंने बैठता लवेश कुमार जी परमा रहा मैं भी बैठता और बात आए कि उन बाद मैंने आकाशवाणी रो इतिहास बहुत लंबो रियो खेती बाड़ी इन दोनों ने मिला रे चौपाल कार्यक्रम रे नाम एक नयो कार्यक्रम शुरू करी दियो जिन मैंने मैं खुद मारे नाम हो यानी कि धनजी नाम हो बैठते और हमारे साथ है भोड़ी एक गोविंद त्रिवेदी या भोड़ी रूप में बैठता तो इन्हें साथ ही मैं शुरू में कई साल तक जफू खान जी भी हमारे इन कार्यक्रम बैठ रहा जी के जफर खान सिंधी हा वे आज देखो आज दुनिया में नहीं है पर मोरो भी साथ इन चौपाल कार्यक्रम में मैंने बहुत मिलियो और इन साथ जो आकाशवाणी जोधपुर जो मैं 81 की बात करूँ 81 मैंने अटे जो है असिस्टेंट डायरेक्टर होता उन टाइम में डायरेक्टर कोई जो है पोस्ट नहीं ही बात 84 में आई और उन टाइम में अपने मुरली मनोहर मंजू साहब हा सहायक निदेशक वे इंटरनेशनल कमेंटेटर हा और जिन टाइम भारत पाकिस्तान रहा मैच होता तो लोग मुरली मनोहर मंजू साहब ने सुनने वास्ते दीवाना हा तो बात आए कि आकाशवाणी जो जो भी एक माइक माते जो भी आदमी आवे नी वे जनता सिर्फ वन लारी जो है वन जानिया करे कि उनने बात मैंने उन्हें ध्यान ने के माइक के अलावा भी बहुत बड़ो जो है संगठन है आकाशवाणी जोधपुर जिन मायने प्रोग्राम सेक्शन है इंजीनियरिंग सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है सब मिलने आकाशवाणी जोधपुर बनिया करे और इन्हें बहुत बड़ो जो है लोगों का काम काज रहे और साथ जो ये जो पहली अपा चिट्ठी पत्री कार्यक्रम हो तो अपने राजस्थानी पड़ोसर कार्यक्रम क्या होता वो कार्यक्रम भी बहुत जो है अपने के लोगों जुड़े हो लोग ठेक दूर दूर कागज लिखता जाने मने पतो लागतो कि अपना आकाशवाणी जो प्रकट तक सुनी रियो है हाँ जे आप अफगानिस्तान ही कागज आवता अपने कने और नहीं जिन टाइम कारगिल युद्ध हो तो उन टाइम अटारा जो फौजी गियोड़ा कारगिल मैंने वे कागज भेजता है और लिखता भी है कि आपको कार्यक्रम भी सुना और उन्होंने खासकर जिनमें खासकर एक रात्रा जो एक फरमाइशी राजस्थानी गीता और भजनौर फरमाइशी कार्यक्रम हो तो गीत गंगा उन्हें लोग बहुत सुनता तो फरमाइशी कार्यक्रम रूप में मैंने बहुत दूर दूर से कागज आवता जो अपने एक पहचान भी बनती
0: तो सर जी अगर आप बोले हो कि एक पहचान भी बनती और दूर दूर चिट्ठियां भी आया करती तो वे समय रेडियो पर लोग बहुत रंगीन चिट्ठियां लिखोड़ी होती अलग अलग डिजाइन बनोड़ी

0: बनोड़ी और बा में बहुत कुछ भावनाएं और संवेदनाएं है करती। तो चिट्ठी से जुड़ोड़ो कोई इसो किस्सो है जिसको आपने याद है और आज जब आप याद करो तो मन में एक ही भावुक हो जाओ।
1: बिल्कुल सही बात है। देखो रत्ना जी, लोग एक काल्पनिक दोस्तों की रेडियो में से कोई के फोटो तो दिखे को नहीं, तो जो हमें मैन बोर जी कार्यक्रम देवता नहीं, तो भी आपने मन में एक विचार करन के दंजियाड़ा वाला भौजी आड़ा वाला उनमें से फोटो बना परा ने नीचे आपने जो है नी चौपाल कार्यक्रम में मायने लोग चौपाल में बैठा है ने सब सुन लिया है, बीच में रेडियो पड़ियो है, इन तरह एक बहुत अच्छा फोटो बना बना में कई बार भेजता, तो उन लागतों की जो अपने श्रोता है वे कई तरह का श्रोता है, कई तरह का कलाकार है, चित्रकार है, वे अपनी भावनाओं कागज के माध्यम भेजता, पहली जो अपने अंतर देशी पत्र हा या पोस्ट कार्ड हमारे माध्यम से भी भावना आपकी भेजता यानी कागज भेजता। आजकल तो जो समय बदल गया है, कंप्यूटर युग आ गया है और चिट्ठी पत्र तो हमें बंद हो गया न, बहुत कम ही आवता वेला।
0: बिल्कुल, अब तो ईमेल का जमाना आ गया।
1: हाँ, अभी जो जमानो बदल गयो, पर वो है ईमेल लोग जिनकने है तो सब जुड़ी है, पर चिट्ठी पत्रियों तो आदमी कदे भी गांव रिमाइंड ढाणी में बैठो वो जो है आप भावना लिखतो और मर तक पहुंचो, में कोशिश करता है कि भी हर चिट्ठी का जवाब भी देवा, है ना।
0: तो
1: इन तरह कार्यक्रम चलतो।
0: तो सर जी, आप अभी थोड़ी देर पहला बोले कि आप जहाँ चौपाल प्रोग्राम दिया करता खेती किसानी और लोग इस पर फिर वो कार्यक्रम हो, तो विन समय बहुत सारा श्रोता जी का है बड़ा ही आपने चार सौ सुना करता, तो विन ने भी कोई छोटो सो कोई किस्सो अगर आपने याद है जो
1: देखो
0: बड़ा ही सुंदर हो तो याद है तो बताया।
1: हाँ हाँ हाँ, जो किस्सो तो यू है आराधना जी के लोग अपा स्टूडियो में बैठा कार्यक्रम देवानी और कौन बैठो कटे सुनियो अपने ध्यान नहीं पड़े, वे सब पाठ जो है ना कागज लिखते उनके मीठा पड़ता, और रेडियो की कई पहचान है गाँव मायने, वो तो मैं आज भी जाऊँ जाने पता लगे कि भी रेडियो ने बड़े जो है ध्यान लोग सुनिया करे। और एक मैं जो किसो बताऊ आपने कि उनके में एक टाबर टोड़ी कार्यक्रम हो तो बच्चों वास्ते ग्रामीण बच्चों वास्ते उन्हें प्रोत्साहन देने वास्ते एक कार्यक्रम शुरू करियो रहो, कभी फोन माते भी वो प्रोग्राम देता, डायरेक्ट फोन इन प्रोग्राम भी हो, कभी जो जान उठे भी रिकॉर्डिंग भी कर लेता, तो मैं उठे एक रतगुड़ियो गाँव है अटे में जाऊन हो स्कूल मैंने बच्चों की रिकॉर्डिंग करता, काफी बच्चा इकट्ठा हुआ हा और लोग बाग आएगा टाबरिया देखने के साथ चौपाल कार्यक्रम में जो देवे आकाशवाणी जो तू गंजी आया है तो लेकिन आया वो ठीक है भावना है उन्हें साहब बच्चा आया, पर जो मार साहब है बे मन है थोड़ा डांटिया कैसा बच्चे क्या देख रहे हो, ये क्या बीट लगाई है, तो वे कैसा के मैं धंजीन देखने गया है के धंजी गई है कोई कलेक्टर है गई जिसको धंजीन देखने गया, तो मैंने वो बच्चे को जवाब आज भी याद है कि वो बच्चे मार साहब ने किया साहब के कलेक्टर तो राजस्थान में कितना वेला पर धंजी तो एक ही है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: वो एक पहचान आकाशवाणी पहचान है, वो कोई दिल से जुड़ा हूँ।
0: बिल्कुल सर जी, आज आप बात करा आकाशवाणी रे गौरव में 90 साल जी की यात्रा है पूर्ण हो रही है, तो आप जमाने रहा कौन कौन सा ऐसा नाम है जिकाने आज आप सबसे पहला याद करो?
1: तो अटे पहली जो डायरेक्टर जोड़ा है के अनिशुल हक साहब है या गोविंद वर्मा साहब है, रतिराम जी है, अनिल राम जी है, अनिल गोयल साहब है, ये भी अपने प्रोग्राम ने किकर जो है जनता तक पहुंचा सके बहुत बड़ो योगदान दियो है और आज भी आकाशवाणी जोधपुर एक अलग पहचान रखे।
0: देखो आज आप प्रो अनमोल समय जी को है निकालियो और आकाशवाणी से जोड़िया, तो इन लिए आकाशवाणी की पूरी टीम आपरे वास्ते बहुत बहुत आभार कह रही है।
1: और आखिर में मैं तो बस एक दो लाइन ही जारी कहूंगी चाहूँ कि मुख्तसर सी वजह है मेरे अदब से मिलने की, मुख्तसर सी वजह है मेरे अदब से मिलने की, मिट्टी का बना हूँ गरूर जितता नहीं मुझ पर।
0: बिल्कुल सर, आप एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: तो आपने और पूरे आकाशवाणी परिवार ने भी शुभकामना है कि आज 90 सालों इन तरह जो कार्यक्रम और जनता रमाई ने एक विशेष पहचान रखी हुई है, आई पहचान हमेशा आगे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद।

तो आज इन कार्यक्रम में देखो फोन लाइन दे जरिए आप बात करी आकाशवाणी रवे अनमोल रतन जिका मतलब सम्मान्य है आप बने आज भी क्या नहीं की याद करा और आज बनी आवाज जिकी है सुरीली वा फिर सु आप रेडियो पर सुनी और आवाज और आज जिकी संवाद शैली ही इसु के बनी 90 साल जिकी यात्रा पूर्ण हो रही है इन्हें यादगार बना दी। आप सभी गुणी जन उद्घोषकारों आज आप जोधपुर से जुड़ने वास्ते आकाशवाणी जोधपुर से जुड़ने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है। आकाशवाणी ने ऐतिहासिक पड़ाव री ढेर सारी शुभकामना है। तो आज री प्रस्तुति ही राजेश लामरोड और संयोजन हो मनीष सोलंकी इन रेसागी ही आप सुलेवा सीख आप रे सखी आराधना जोशीरा घने मान राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि

0: हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

0: की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जन भागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश तेलंगाना पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा तमिलनाडु पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की

संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता।

0: मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। में

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी।

0: 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज

0: हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एस डी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज़ को नहीं आती है बनवाने के लिए।

0: सलवार, राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
1: आपने कहीं से सीखा था या?
0: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
1: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
0: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
1: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
0: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
1: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
0: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कम्प्लीट।
1: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
0: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
1: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
0: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
1: आपकी
0: मैं मेरे
1: पसंद
0: पति का नाम लेना चाहूंगी मैम।
1: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
0: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े से मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
1: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया।

0: अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: घर का सारा काम भी करती हूँ।
1: देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है, चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
0: हाँ, बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
1: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगी?
0: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ, और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
1: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप रोग का पता लगा लेती हैं?
0: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
1: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
0: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में, कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
0: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
1: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
0: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
1: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
0: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
1: अच्छा।
0: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
1: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
0: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
1: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
0: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
1: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
0: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है वो यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
1: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
2: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
1: पुष्पा डोबरियाल
2: जी
1: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
2: जी मैम।
1: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
2: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
1: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
2: जी मैम थैंक यू। मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
1: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
2: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
1: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है ना
2: मसूरी हो गया केदारनाथ हो गया बद्रीनाथ हो गया हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
1: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
2: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
1: पुष्पा जी घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
2: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
1: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
2: सखी सहेली हेलो फरमाइश।
1: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर में रखते हैं, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: त्रिपुरा से मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो बोरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी।
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली।
1: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
2: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
1: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
2: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
1: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
2: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
1: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
2: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
1: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
2: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
1: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
2: हाँ।
1: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
2: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
1: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
2: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
1: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
2: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो अच्छा। उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?

0: मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं।
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते ना बड़े बड़े।
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से।
0: हाँ।
1: तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरा ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है, इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है। और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए वाला गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा
1: जी
0: अच्छा था।
1: जी मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी।
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहुशो हवाल दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी जी जी
0: हर्षिता, आपको सुनवा

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-2462, 022-28-670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-2462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28-670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

का सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते और रामनारायण जी अक्सर कहा करते मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। राम नारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, मैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का

आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहाँ भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर

0: खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

0: क्या के आंखें बिछा दूं करूं क्या।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।

0: 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी।

0: हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली। और आज यहाँ मेरे साथ है
1: दोस्तों, मैं हूँ अदिति मौलिया। शाम का वक्त है, ट्रैफिक धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा है, चाय की क्रेविंग भी शुरू हो चुकी है। और इसी परफेक्ट इवनिंग वाइब के साथ हम आ गए हैं आपके साथ और एक प्यारी सी प्लेलिस्ट लेकर, जो इस गर्मी के मौसम में आपको हंसी वादियों के दर्शन करवाएगी और आपको ठंडक का एहसास करवाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ ही हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गर्मा गर्म टॉपिक्स पे, जिनमें होंगे ट्रेंड की कुछ बातें जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, हम जो सारे दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और बहुत सारी गपशप। तो चलिए हमारा ये जो प्रोग्राम है उसकी अब शुरुआत करते हैं हमारे इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: दोस्तों, अगले कुछ वक्त तक ना हम बातें करने वाले हैं लाइफ की, यूथ की, ट्रेंड्स की, ओवरथिंकिंग की और उन सब सिचुएशंस की जहां हम सब बोलते हैं यार ये तो मैं ही हूँ।
1: बिल्कुल, और काफी चीजें आपको रिलेटेबल भी लगेंगी और काफी आप सोचोगे अच्छा ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ना आज की जनरेशन की लाइफ थोड़ी फास्ट है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, और कभी मोटिवेशनल रील चल रही होती है तो कभी इमोशनल प्लेलिस्ट।
1: बिल्कुल, और कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, ये जो इमोशंस का हमारा रोलर कोस्टर है जिसे हम रोज हम सब फेस करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपसे हम बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे और आप ही हमसे रिलेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे। तो अदिति कैसा रहेगा आज का हमारा ये सफर?
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे बीच में एक डिबेट होने वाली है।
1: हाँ
0: हाँ, तो मैं ऑडियंस जो है हमको जो सुन रही है उनको पहले ही बता दूँ, अगर आपको डिबेट सुनने में या क्या बोलते ना
1: क्या बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम एक दूसरे को हमारी बात काटने वाले एक दूसरे से, तो वो जो आपको गॉसिप में मजा आएगा ना, तो आप उसके लिए ट्यून इन रहिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: यार डॉली मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में, ये आजकल का जो है ना वॉइस नोट कल्चर मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे इसमें क्या खराबी है, इतना बढ़िया तो है वॉइस नोट कल्चर, कितना हेल्पफुल है हमारे सबकी लाइफ में।
0: कैसा हेल्पफुल है, मेरे को तो टेक्स्ट या राइटिंग जो होती है हम पेपर पे जो लिखते हैं वो ज्यादा बेटर लगता है।
1: पर अदिति अगर मान लो तुम कहीं जल्दी में जा रही हो और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इतना लिख के और इतना टाइप करके भेजो, तो तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल होगा कि तुम एक सेकंड में सारी डिटेल शेयर की और सेंड हो गया मैसेज।
0: पर ये ऑफिस में थोड़ी आपके वर्क करेगा, डिटेल्स तो मेनली तो उसमें जाती है।
1: बट फिर भी कितना फास्ट और कितना कन्वीनियंट है। प्लस इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो हो सकता है जिसमें तुम हार जाओ, जैसे
0: अच्छा।
1: कि हम कुछ भी हम बताना चाहे तो टेक्स्ट में जो हमारा रियल जो इमोशन है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन वॉइस नोट में बता सकते हैं।
0: इमोजी यूज कर सकते हैं अगर टेक्स्ट मोबाइल में कर रहे हैं तो।
1: पर वॉइस नोट में टोन पता चलती है ना कि किस टोन में बोला गया। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि हमारा टाइपिंग का जो एफर्ट है वो कम हो जाता है।
0: पर टाइप करने से जो हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, हमारी जो हमें खुद के थॉट समझने की जो पावर होती है वो राइटिंग से ज्यादा होती है,
1: पर
0: ना कि वॉइस के उससे।
1: पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी तो कम होती है।
0: सोच सकते हैं ऐसा। पर अगर जैसे आप क्लासरूम में हो, ऑफिस में हो, तब आप ना रिकॉर्डिंग सुन सकते हो ना किसी को भेज सकते हो, तो तब वहाँ टेक्स्टिंग ही काम आती है।
1: पर अगर बहुत हमारा कुछ ऐसा स्केड्यूल है या कुछ ऐसा मोमेंट है जहाँ हमें बहुत लॉन्ग एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा?
0: वो कर सकते हैं वॉइस पर।
1: और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए?
0: हाँ,
1: उनके लिए कितना? अब इस पे तो तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं होगा।
0: बिल्कुल नहीं है, पर जो जनरल

0: होती है हमारी, उससे हमारे थॉट जो है हम वो हमको समझने में बेटर करता है टेक्स्ट या राइटिंग. और जो लेटर्स लिखते हैं उस वो भी एक इमोशन था एक ज़माने का जो अब मिसिंग है इस कल्चर से. तो वो तुम इस डिबेट में तो नहीं जीत पाओगे कि उस ज़माने के लेटर्स अब काम नहीं आते.
1: देखो वो इसका तो देखो कंक्लूजन पे अगर हम आए तो वो यही रहेगा कि हर किसी इंसान की इमोशन को एक्सप्रेस करने का जो वे है वो डिफरेंट होता है. और जनरेशन भी वैसे बहुत अलग अलग टाइप की है. जो लेटर्स का जो टाइम था उस वक्त की जो जनरेशन थी, जो लोगों की सोच थी और जो भी सब कुछ काम जिस तरह से चलता था वो काफी अलग था आज के टाइम से. आज हर चीज फास्ट है और इसके फायदे नुकसान दोनों है.
0: उससे अगर फास्ट लाइफ है तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है. और जैसे अगर मैं वॉइस नोट भेज रही हूँ तो मेरी एक पर्सनल वॉइस उसमें यूज़ हो रही है. वो मेरे को नहीं पसंद आएगा कि हर कोई मैं किसी को वॉइस भेजूँ अपनी. ये इसका एक
1: बात तो तुमने सही कही है. तो चलिए इस टॉपिक पे हमें और
0: ये बहस चलती रहेगी दोस्तों हमारी, पर आप सुनिए ये वाला सॉन्ग.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: बैक टू यू वन दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक्स पे, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है अटेंशन स्पान. यानी कि आजकल 10 सेकंड की जो शॉर्ट वीडियोस जो हमें शॉर्ट होके भी हमें लॉन्ग लगने लगी है, और वो उसका कारण भी ये है कि हमारा जो अटेंशन स्पान है बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है.
1: बिल्कुल, जो भी छोटी सी भी एंटरटेनमेंट रील होगी हम देख के स्क्रॉल कर देंगे, अगर उसमें एक चीज नहीं पसंद आएगी तो हम स्क्रॉल कर देंगे. तो ऐसे हमारा जो फोकस है वो भी कम होता जा रहा है, और जो हमारी थिंकिंग स्किल है, हमारी मेमोरी है, उस पर भी इसका इफेक्ट काफी होता है.
0: हाँ बिल्कुल, और जैसे बोलते ना, अब कोई भी रील बना रहा है जो उसमें हुक है, मतलब जो फर्स्ट के 5 सेकंड या 3 सेकंड में अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो उस रील को हम देखेंगे, नहीं तो हम उसको स्क्रॉल कर देंगे. और अगर उसमें कुछ काम की बात की भी गई हो, कुछ काम का कंटेंट हो उसमें, तो वो भी साथ में स्क्रॉल हो जाएगा.
1: तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पर जो आजकल की जो भी ये शॉर्ट रील्स बन रही है वो बनी इसलिए रही है ताकि जो आगे के जो 5 सेकंड है उस पर सब फोकस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने वीडियोस बनाते हैं. ताकि ये तो आप नहीं करेंगे तो आप देखना चाहेंगे कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा पूरा देख लेंगे और अपना टाइम वेस्ट भी कर देंगे.
0: हाँ, तो वो जो स्टार्टिंग के 5 या 3 सेकंड होते हैं इसी में वो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो हमें उसमें रोक के
1: रखता है.
0: और एक्चुअली वो ये जो चीज है, पर एक प्रॉब्लम है. जैसे मान लो एक रील हमें पसंद आई, हमने देखी, फिर दूसरी में भी हमें पसंद आई, फिर हमारा जो वो लूप होल में हम फंस के रह जाता है,
1: स्क्रीन टाइम
0: बढ़ता रहता है, और जो डोपामाइन हमें लगता है कि हमें खुशी मिल रही है और हमें मजा आ रहा है, वो एक्चुअली हमारे लिए एग्जॉस्टिंग होता है, कंज्यूमिंग होता है बहुत ज्यादा.
1: इससे स्क्रीन टाइम बन रहा है और हम फैमिली टाइम भी इससे कम दे रहे हैं. और
0: फैमिली टाइम क्या, हमारा काम पे,
1: पढ़ाई,
0: हर चीज पे हमारा कंसंट्रेशन तो चाहिए ही होता है, तो हमारा फोकस कंसंट्रेशन बहुत.
1: बिल्कुल, ये 10 सेकंड के डोपामिन इंक्रीज के लिए, सर्च के लिए हम अपनी जो है वेलनेस, अपनी मेंटल हेल्थ छोड़ देते हैं.
0: हाँ, और इसको चेक करने के लिए अदिति हम ऐसा भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपने दोस्तों के साथ बैठे और कुछ एक ऐसा जो हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं ना, गर्मा गर्म मुद्दा जो अभी चल रहा है उस पे बैठ के हम बात करें, तो उस लोग बात ही नहीं कर पाते.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कॉन्वर्जेशन अच्छी होने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए अच्छा कंटेंट और बहुत सारी इतनी कैपेसिटी चाहिए कि आप डिस्कस करो अच्छे से बैठ के. थोड़ी देर से ज्यादा बात ही नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल, क्योंकि हम देख ही 10 सेकंड की रील रहे हैं और उसमें जितनी आपको इन्फॉर्मेशन परोसी गई है हम उतना ही बोल पाते हैं,
0: उतने में ही थक जाते हैं.
1: हाँ. तो जरूरी है कि हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी पूरी रील तो नहीं, पूरे वीडियो जरूर देखें.
0: हाँ,
1: जो
0: लॉन्ग वीडियोस
1: देखें, जो अच्छा काम के हैं.
0: ऐसा नहीं कह रहे हम कि आप और हम जो फोन जो भी डिजिटल जो हमारे आसपास सारी चीजें हैं वो हम छोड़ ही दे, और वो पॉसिबल भी नहीं है.
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम उसको कम तो कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. हम शॉर्ट वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक ही ना करें, लॉन्ग वीडियोस को प्रेफर करें.
1: यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालिए.
0: हाँ बिल्कुल, और अगर शॉर्ट वीडियोस में हमें मजा आ रहा है तो मूवी देखने में और भी मजा आएगा, तो एक अच्छी मूवी सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं, अगर हमें एंटरटेनमेंट ही चाहिए.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: और अच्छे गाने सुनने तो आपको पता ही है आप कहाँ है.
0: बिल्कुल, हमारे साथ.
1: तो अब चलिए सुनते हैं ये वाला सॉन्ग.

0: क्या कर रही हो डॉली?
1: अरे वो मैं पेपर को फेंक रही थी, वो यूजफुल नहीं है ना।
0: तो तुम यही तो नहीं फेंकने वाली हो?
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे।
0: तो कहाँ फेंकने का सोच रही हो तुम इस पेपर को?
1: वैसे मैंने कुछ सोचा ही नहीं,
0: मतलब चलते फिरते कहीं भी फेंकने का सोच रही हो ऐसा?
1: ठीक, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मैंने, तुम कहना क्या चाहती हो?
0: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीरो सिविक सेंस डॉली, जीरो सिविक सेंस।
1: अरे अदिति ये क्या कह दिया तुमने, बहुत ही बहुत खतरनाक टॉपिक तुमने याद दिला दिया।
0: ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है कि ऐसे गंदगी फैलाते फिरते हैं लोग।
1: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने ऐसे एक्शंस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैंने कुछ, मेरे हाथों से कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं

0: उसे क्लीन हाथों हाथ कर।
1: बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं कि लोगों के जो पब्लिक एटिकेट्स हैं इन पब्लिक प्लेसेस वो बेटर हो, जो सिविक सेंस है उनका वो बेटर हो। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं डॉली?
0: अदिति, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें करना ही क्यों है। करना इसलिए है क्योंकि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा बेड हम सही करते हैं, हमारा वॉशरूम हम सही करते हैं, और अगर हम सही रख रहे हैं और हमारे घर में और कोई मेंबर है जो नहीं रखते, तो उन्हें भी हम सिखाते हैं, बताते हैं कि आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, आपको सही रखना पड़ेगा।
1: जो आप जो चीज़ खुद कर रहे हो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कहीं बाहर जाके गंदगी कर रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप साफ करो उसको। या आप जैसे बस में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आप मोबाइल चला रहे हैं या शॉर्ट वीडियोस या रील्स देख रहे हैं तो एकदम हाई वॉल्यूम पे देखने लग जाते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़

0: वीडियोस या रील्स देख रहे हैं तो एकदम हाई वॉल्यूम पे देखने लग जाते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और उसको अब क्योंकि एक पब्लिक प्लेस पर रहें तो सबका सोच के आपको देखना है, तो कम वॉल्यूम पे या आप ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हैं। और जो है जैसे थिएटर में भी लोग जो स्क्रीन की जो डिस्प्ले लाइट है वो एकदम हाई रखते हैं, तो उससे आपके जो पास बैठा है उसको भी डिस्टर्बेंस होती
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
1: छोटे छोटे ऐसी ये छोटी छोटी बातें तो ही होती हैं जिन छोटी होती है तभी लोग सीरियस नहीं लेते कि क्या हो गया, एक ने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। अरे भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है, हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ एक्चुअली लोग रिस्पॉन्सिबल है और तभी उनकी सिटी, उनकी जो भी आसपास की स्पेस है वो क्लीन रहती है। ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता,
0: बिल्कुल
1: ये
0: सबको सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने ना एक वीडियो देखा था जो जापान का था, तो उसमें एक लेडी मेट्रो से जा रही थी तो उसका एक जो ड्रिंक था हाथ में वो उस पे लो गया, तो वो क्या करती है ना अपने ही रुमाल से पूरी वो जो गंदगी उसने करी थी वो साफ करती है और चली जाती है, लाइक मतलब उसके लिए रेगुलर डे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये किसी ने भी उसको नहीं कहा था कि ये आपने गंदा करा है आप साफ करो, या उसके लिए उसने पेनल्टी भरी हो, कुछ नहीं, बस खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि खुद ने गंदा करा था।
1: ये अपने आप में एक रेस्पेक्ट की बात भी है कि आप अपनी इज्जत करते हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह की आप रिस्पेक्ट करते हो तभी आप उसकी केयर कर रहे हो।
0: बिल्कुल, ये चीज हम सब में होनी चाहिए और हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए।
1: बिल्कुल, तो ऐसे ही आप भी अपने आसपास के जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी आप जिन्हें भी देखो कि ऐसा कुछ वो कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो आप उन्हें बताएं और खुद भी सीखें और सिखाएं।
2: Natural light. Do you feel alright? What a natural light.

0: with me.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज पूरे देश की नजरें ना टिकी हुई हैं आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबले में से एक पर, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स यानी क्वालिफायर 2। जो टीम आज जीतेगी वो फाइनल में पहुंचकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टकराएगी और जो हारेगी उसका आईपीएल सफर यहीं समाप्त हो जाएगा।
2: बिल्कुल दोस्तों, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इमोशंस हैं हमारे लिए और हर सिक्स पर दिल उछल कूद करने लगता है, हर विकेट पर सांसें हमारी थम सी जाती हैं और हर मैच अपनी एक नई कहानी से लिखता है।
1: बिल्कुल, एक तरफ गुजरात टाइटंस जो पूरे सीजन में जबरदस्त क्रिकेट खेलते आए हैं, दूसरी तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो एलिमिनेटर जीत कर जबरदस्त मूवमेंट के साथ आ रहे हैं।
2: बिल्कुल, युवाओं के लिए आईपीएल अपने आप में एक इंस्पिरेशन है और बहुत सारी चीजें सिखाता है, हार्ड वर्क, टैलेंट, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, इन सब का जो मिश्रण जो है वो हमें नजर आता है।
1: बिल्कुल, आज के मैच में भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो यंग स्टार्स है वो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक शानदार से आईपीएल मैच के लिए, क्योंकि मैं तो सपोर्ट करने वाली हूँ अपनी आरआर को।
2: क्या बात है, सेम हियर।
1: तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार आईपीएल रात के लिए।

0: स्वागत है आपका दोस्तों कार्यक्रम युवानी में, जहाँ मैं हूँ डॉली और
1: मैं हूँ अदिति।
0: क्या बात है अदिति। तो मेरे हिसाब से अदिति अब वक्त आ चुका है वर्ड ऑफ द डे बताने का। तो अदिति आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है?
1: देखो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका जो ये एक क्या बोलते हैं ना, एक्शन है हमारा।
0: तो तुम ऑरा बनाना चाहती?
1: बिल्कुल ऑरा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ना जो हम सबसे ज्यादा वेट जब जो वुमेन करवाती हैं वो होता है कांच के सामने, हम जब रेडी हो रहे होते हैं, है ना, सब अग्री करता है इसमें।
0: हाँ हाँ।
1: तो इस वर्ड मतलब ये जो एक्शन है हमारा उसके रिलेटेड है ये वर्ड।
0: अच्छा, मतलब हम जब रेडी हो रहे होते हैं मिरर के कांच के सामने, तो लेडीज जो तुमने वर्ड यूज किया है वुमेन, मतलब तुम कहना चाहती हो कि बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, कुछ रिलेटेड तो नहीं है?
1: कोई जल्दी भी तैयार हो जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप टाइम लेके भी आप सुंदर दिख सकते हैं, टाइम नहीं लेके भी आप सुंदर दिख
0: सकते। टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं,
1: बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर जो ये वर्ड है जो है प्रिम्पिंग, ये यूज होता है स्पेसिफिकली जब

0: अब कांच के सामने तैयार हो रहे होते हैं।
1: ओ, तो वर्ड जो है उन्होंने बता दिया है, वर्ड है प्रिम्पिंग। प्रिम्पिंग यानी
0: उसका मतलब यही है कि अब जब कांच के सामने आप तैयार होते हैं तो प्रिम्पिंग वर्ड यूज करते हैं, जिसका स्पेलिंग है PRIMPRIY।
1: बिल्कुल, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और अगर हम बात करें इसके पीछे की साइकोलॉजी की, अदिति, तो हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि कई बार ये चीज जो है वो हानिकारक भी हो जाती है। क्योंकि कई जरूरी नहीं है ये लेडीज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, हम जेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। आजकल जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ये सारी चीजें जो चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया दिखावा जो है उसकी तरफ बहुत आगे बढ़ चला है, अब बहुत आगे पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो ये जो प्रिम्पिंग है वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है मेरे साथ।
0: हाँ बिल्कुल, आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू से, मतलब कि जो ये दिखावा है वो चीज हमको कम करना है और अपनी नेचुरल ब्यूटी जो है वो,
1: हाँ,
0: वो
1: और नेचुरल ब्यूटी की एक नेचुरल ब्यूटी मतलब नेचुरलनेस आपके अंदर। आप ऑफ कोर्स आप सब लोग हमारी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो प्रेजेंटेशन है अपने आप को लेकर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा बेस्ट वर्जन होना चाहिए, लेकिन वो उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि हमें किसी का वैलिडेशन चाहिए।
0: बिल्कुल, किसी से कंपेयर करके आप उससे अब मतलब उससे ज्यादा खूबसूरत दिखना है मुझे, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए।
1: हाँ, आप जैसे हैं हमें खूबसूरत होना है।
0: बिल्कुल, आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंट फील करिए, तो आप असली में ब्यूटीफुल कहेंगे।
1: और क्या है ना, इसमें एनर्जी भी कितनी सेव होती है ना, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, हम जो है बिल्कुल बढ़िया है।
0: आई लव मी, ये कहना, आप सेल्फ लव करना शुरू करिए।
1: तो चलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ, आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे था
0: प्रिम्पिंग।

0: अदिति बहुत भारी मात्रा में कमी हो चुकी है मार्केट में।
1: किसकी, विटामिन डी की?
0: नहीं, वो तो भर भर के मिल रहा है, इतनी तेज धूप है। कमी हो गई है मेंटल पीस की।
1: ओ, ऐसा क्यों?
0: अरे बहुत ज्यादा, हर चीज में जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी भागो भागो भागो भागो, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, इन सब के चक्कर में दिमाग का जो दही हुआ है।
1: बिल्कुल, ये तो मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट से। इतनी भागदौड़ अब हमारे लाइफ में भी हो चुकी है, यूथ के लाइफ में, खुद के बारे में सोचने का ही वक्त नहीं हमारे पास।
0: अरे खुद के बारे में सोचने का वक्त की क्या बात है, बात है किसी से पूछो कि अरे हम वहाँ चले, टाइम नहीं है, बिजी हूँ। अरे ये क्या बात हुई, टाइम नहीं है? टाइम तो एक्चुअली है, आपकी प्रायोरिटीज डिसाइडेड नहीं है एक्चुअली।
1: हाँ, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी लाइफ, कब कौन सा क्या टाइम देना है आपको, किस चीज को कितना टाइम देना है।
0: बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिस जो हम एक वर्ड होता है हसल कल्चर, जो हम हसल कर रहे हैं लाइफ में, मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम ढूंढ क्या रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे लगातार भागे चले जा रहे हैं, चले जा रहे चले।
1: और जैसा किसी को पता भी है उसको क्या चाहिए, वो मिल भी जाता है, उसके बाद क्या,
0: उसके बाद क्या, हम जैसे वो बोलते हैं ना, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। अब वो एक दिन आ गया, वो एक्चुअली वो एक दिन की होती भी नहीं है, वो कई सारे दिनों की, हम रोज सफलता जो हम पाने की, जो सक्सेस हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली कंसिस्टेंट और हमें रोज जीत महसूस हुए ना, तो वो एक्चुअली क्या, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, लाइफ एक अपने आप में एक एहसास है, जर्नी है,
1: उसको आपको
0: मजा असली उसी में है, जर्नी में। और जब आप इतनी मजेदार जर्नी से गुजरते हुए जब उस एक दिन पे जाते हैं, तो वो एक दिन स्पेशल हो ना हो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, और हमको सफलता को है ना एक पॉइंट, एक उससे मेंटल पीस हमारी नहीं होनी चाहिए कि हमको ये अचीव कर लिया हमने तो ये हम खुश रहेंगे, ऐसा। जो आपकी जर्नी है वो आप अगर ब्यूटीफुल बनाते हैं, एक एक जो आपके स्मॉल स्टेप्स हैं वो आप अचीव करते हुए चलिए, तो आपको मेंटल पीस भी मिलती रहेगी और आप सक्सेस की तरफ चलते भी रहेंगे।
0: और एक और पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, वो है बैलेंस, अपने गोल्स और अपनी हेल्थ या जो भी आपके कनेक्शंस हैं उनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बातें कर रही हो आज डॉली तुम।
0: हाँ, क्यों नहीं।
1: हमारे श्रोताओं के लिए कुछ भी है ना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो एक अच्छा सा गाना भी सुनवा दे।
0: हाँ, ये रहा।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: तो दोस्तों आज हमने की बहुत सारी बातें और सुने प्यारे प्यारे से गाने, जहां मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली, और आज यहां मेरे साथ थी
6: मैं अदिति मालिया। इसी के साथ आज की ये खूबसूरत शाम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की बातें, हमारी बातें आपको पसंद आई होगी और शायद थोड़ा सा स्माइल भी दिया होगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हमारा गोल था।
6: तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे आपसे अगले युवाणी में।
5: बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति राजेश लामरोड और संयोजन मनीष सोलंकी।
6: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कुछ पर प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण जी

0: सेवन और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM एंड 102.1 MHz पर। शाम के 6 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं गुड इवनिंग जोधपुर।

नमस्कार जोधपुर, मई का महीना और धूप के ये तीखा मिजाज, सच पूछो तो इस तपिश ने सबको थका कर रख दिया है। पर जरा ध्यान दीजिए, जब हम छोटे थे तो इस मई के महीने में सबसे ज्यादा इंतजार होता था। पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब था गर्मियों की छुट्टियां। नानी और दादी का वो गांव, वहां घर का आंगन। मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्रेया व्यास और गुड इवनिंग जोधपुर की इस शाम में आज हम वापस उसी भोले से बचपन में लौटेंगे। धूप तब भी लगती थी, पर लू के थपेड़ों से बचाने के लिए हमारी माँ का आंचल हमेशा तैयार रहता था। आइए यादों की इस तिजोरी को खोलते हैं इस प्यारी सी धुन के साथ।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

गर्मी की धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, बचपन में कहाँ असर करती थी। दोपहर में जैसे ही बड़े बुजुर्ग थोड़ी सी आंख मूंदते थे या उनको छोटी सी झपकी आती थी, उतने में हमारी टोली छुपके से निकल पड़ती बाहर और कैरी तोड़ते, गलियों में खेलते और पकड़े जाने पर उनकी तीखी डांट सुनते। सच मानिए, आज इन बंद कमरों में कहाँ हवा का वो सुकून मिलता है जो दादी उस डांट के बाद में अपनी गोद में सिर रख के सुलाती और हल्के हाथों से हवा देती थी। चलिए बचपन की उस मीठी धूप और छांव को इस संगीत में घुलते हैं।

शाम ढलते ही गांव का वो आंगन, मतलब उनकी रौनक अलग ही हो जाती थी। तपती हुई मिट्टी पर जब हम लोग पानी का छिड़काव करते, तो सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में या हमारे घर में महकती रहती थी। फिर बिछती थी खटिया और इंतजार होता था रात के खाने का। आज के इस दौर में वो आंगन शायद छोटे हो गए हैं, पर यादें आज भी उतनी ही लंबी और ताजी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: खुले आसमान के नीचे आंगन में सोना और दादी नानी से कहानियां सुनते सुनते तारे गिनना। तारे गिनते गिनते कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता था। आज बंद कमरों में निगाहें बस फोन पर रहती है। चमकदार ऐसे होने के कारण ना आंखों में नींद होती है। नींद तो दूर की बात है, हमारे मन में ख्याल भी नहीं आता है कि लेट हो रहा है, सो जाना चाहिए। खैर वक्त वक्त की बात होती है, पर आज की शाम थोड़ी देर उस खुले आसमान को याद कीजिए, अपने बचपन को आवाज़ दीजिए और इन सुरों में थोड़ा खो जाइए।

0: अपना सुख एक तरफ हर माँ बड़न रसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपति आ रहे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: रात अब गहरी होने लगी है और अपने शहर में भी अब दिन भर का शोर शांत हो चुका है। कैसी अजीब बात है ना, वक्त आगे बढ़ता गया और हम बड़े होते गए, पर बचपन पीछे छूटने की जगह हमारे अंदर कहीं हमेशा के लिए ठहर सा गया है। बस कभी कभी धूल हटाने की जरूरत पड़ती ही है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उम्मीद है गांव का आंगन, नानी दादी की कहानियां और छुट्टियों की बातों ने आपके चेहरे पर जरूर एक प्यारी सी मुस्कान तो ला ही दी होगी। अब गुड इवनिंग जोधपुर से आपके दोस्त श्रेया व्यास को दीजिए इजाजत। घर के आंगन में बैठिए, अपनों के पास बैठकर दो बातें कीजिए, सुकून मिलेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल इसी एहसास के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ यानी श्रेया व्यास के साथ गुड इवनिंग जोधपुर। ये FM सन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयमाला प्रोग्राम विविध भारती से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। सभी सुनने वालों को प्रीति शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति से भरे इस गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म योद्धा से। इसे गाया है बी प्राग ने, गीतकार मनोज मुंतशिर है, संगीत तनिष्क बागची का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

भारतीय सेना का गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में जिंदगी और मौत फिल्म का गाना। गीत शकील बदायूनी ने लिखा है, संगीत सी रामचंद्र का है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए अब सुनते हैं छैला बाबू फिल्म का गाना, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने रॉकी फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। कार्यक्रम जयमाला का शेष भाग अंतराल के उस पार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम की शुरुआत। राजेंद्र मेहता की गाई इस गजल के साथ कर रहे हैं कलाम बशीर भट्ट का है, संगीत साहिद हुसैन भूरे का।

0: अभी आपने रीता गंगोली की आवाज में ये गजल सुनी। कलाम मुमताज मिर्जा का था, संगीत जयदेव का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: आइए अब सुनते हैं प्रद्युमन शर्मा की आवाज में ये गजल। कलाम राजेश जौहरी का है, संगीत प्रद्युमन शर्मा का।

0: लीजिए सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब तो ये बोतल ही है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई?
0: अरे कौन सी मुसीबत?
1: हाय, अब मैं तुम्हें स्टैंप पेपर पर एफिडेविट में लिख के

0: मुसीबत, अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर टोली में डालकर इस घर में लाए थे।
1: क्यों, अब क्या हुआ?
0: अजी वही जो रोज होता है, मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है, मैंने क्या किया है?
1: हाय, अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या अर्ज है?
0: अजी तुम्हें तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोच कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
1: हाँ याद है, अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था। और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे।
0: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में, पहचानना मुश्किल हो जाता था।
1: यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहूं। अरे माँ कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो तो तुमने क्या जवाब दिया?
0: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है हाय हाय, 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
1: अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
0: कि क्या, यानी कि मैं बहू को जला दूं?
1: अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही हैं और बहू से छुटकारा पा रही हैं।
0: हरीश के डैडी, मैं सद के जाऊं तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी चक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी।
1: अरे तो फिर सोच क्या रही है, नेक काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू पर हल्ला बोल दो, पका।
0: नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, फांसी हो जाएगी।
1: अरे इसका मतलब है हरीश की मम्मी तुम्हें उस नए केरोसिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है। ये देखो
0: क्या है, बहुओं को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल। क्या मतलब?
1: अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा? उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
0: अच्छा हा? तो फिर ये बताओ, माचिस कब जलानी पड़ेगी?
1: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी।
0: अपने आप जल जाएगी? अरे हरीश के रेडी, फिर तो मैं 1-2 घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी, मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
1: अरे ठहरो तो सही, हरीश की मम्मी। हाँ बोलो, बात तो सुनती जाओ। हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
0: हाँ ये तो सभी को पता है।
1: जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा।
0: तो फिर?
1: अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो। अच्छा? दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं उससे प्यार करती हो। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा।
0: अरे वाह, क्या तरकीब है।
1: अरे लो, अब बहू जी आ रही है।
2: हाय पिताजी।
1: क्यों बहू, अब क्या हुआ?
2: क्या नहीं हुआ, जो इस घर में हर रोज होता है आपको नहीं मालूम?
1: अरे बेटी रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
2: आज फिर माता जी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया, और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माता जी, क्यों नाराज हो रही हो, तो कहने लगी, सत्यानाश हो तेरा, बहू होकर तुम्हारी ये मजाल मुझसे पूछती है क्या बात है? अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप ही तो कुछ नहीं करते।
1: अरे मैं क्या करूं बेटा, तुम तो उससे 6 महीने में ही परेशान हो गई हो, मेरी हालत देख, 25 साल से उसे झेल रहा हूं, ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं, और मैं तो ठहरा एक बेबस और बदकिस्मत पति, लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाने नहीं लगा सकती।
2: लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं?
1: अरे बेटी तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो।
2: आपका मतलब?
1: अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
2: नहीं, ये कैसे हो सकता है पिताजी, एक सास तो बहू को जला सकती है।

0: लेकिन बहू सास को कैसे जला
1: सकती? क्यों नहीं जला सकती, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है।
2: पिताजी, जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है, दुल्हन नहीं आती। जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है, दूल्हा नहीं। उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती।
1: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
2: नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है, मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
1: इसका मतलब है बहू, तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो,
2: सास को चलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल, क्या मतलब?
1: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है।
2: अच्छा?
1: उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
2: अच्छा, तो फिर माचिस कब जलानी पड़ेगी?
1: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं। यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे, उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी।
2: अच्छा, ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर किटी पार्टी रखा देती हूँ। मैं एक घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी, और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी अटेंड कर रही होंगी, उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी।
1: अरे ठहरो।
2: क्या हुआ?
1: हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
2: हाँ, ये तो सभी को पता है।
1: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी, पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
2: हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
1: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती, उससे प्यार करना शुरू कर दो।
2: प्यार?
1: हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
2: प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
1: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
2: अच्छा ठीक है पिताजी।
3: राधे श्याम, सीताराम।
2: तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूँ।
3: राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी, आई माता जी।
2: जी माता जी।
3: बहू, कहाँ थी तू?
2: मैं यहीं तो थी माता जी।
3: बेटी, तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
2: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं।
3: बहू, तू ठीक तो है ना?
2: जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
4: वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया क्या?
2: क्या क्या कहा माता जी? चक्कर?
4: कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बैठ जा। चक्कर तो नहीं आ रहे ना?
2: चक्कर? मुझे चक्कर क्यों आएंगे?
4: आएंगे बेटी, आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को।
2: 6 महीने शादी को हो गए? तो क्या हुआ माता जी?
4: वो
2: अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
4: मैं? मुझे क्या हुआ है?
2: आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
4: मेरे घुटने क्यों कांपेंगे?
2: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है ना? लाइए माता जी, मैं आपके घुटने दबा।
4: नहीं नहीं बहू, रहने दो, रहने दो।
2: लाइए ना माता जी, लाइए।
3: अच्छा, बहू रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
2: मेरा बस चले तो घुटनों की बजाय इसके गर्दन दबा दो।
4: क्या कहा बेटी?
2: कुछ नहीं माता जी, मैं टांगे दबा रही हूँ।
3: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे,
4: मैं इसे जीने दूंगी तब ना।
2: माता जी आपने कुछ कहा?
3: नहीं नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ।
2: कथा?
3: जब कोई प्राणी इस संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
2: ये आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे, इस बुढ़िया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली है?
3: क्या कहा बहू तुमने? कुछ
2: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी आप अच्छी बनी है, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का।
3: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
4: बहू
2: जी,
4: एक बात बताओ
2: जी,
4: तुम तो फिल्में देखती हो ना?
2: जी हाँ।
4: अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
2: जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है।
4: अच्छा?
2: वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती
4: है। हाथ पकड़ लेती है? हाय, मेरा दिल भी तो धक
5: थक कर रहा है।
2: माता जी, मेरा

0: भी।
1: बहू मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है?
0: चल ठहरो जरा
1: बहू, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
0: माताजी
1: ये लो बहू, पहन लो इसे। हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
0: ये क्या किया आपने माताजी? ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
1: मुझे खुद पता नहीं बेटी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है? लगता है शायद
0: शायद क्या माताजी,
1: शायद शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहू।
0: ये क्या हो गया है आपको, एक सांस होकर बहू से प्यार करने लगी है?
1: हाँ बहू, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे।
0: माताजी मुझे भी होता जा रहा है।
1: क्या हो रहा है बेटी?
0: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
1: अच्छा आओ बेटी मेरे गले लग जाओ। बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें चलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है बहू।
0: आए हाय माताजी, मुझे भी माफ कर दीजिए माताजी, मैंने भी आपको धोखा दिया है, मैंने भी आपको चलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है।
1: यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है? अब हमें इस दुनिया में कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती,
0: नहीं।
1: हम जिएंगे तो एक साथ, हम मरेंगे तो एक साथ। दुनिया की सासों एक हो जाओ, अपनी बहुओं को गले से लगाओ।
0: दुनिया की बहुओं एक हो जाओ, अपनी सासू जी से प्यार बढ़ाओ और अपने ससुर जी से खबरदार हो जाओ।
2: बताइए बताइए एक बार क्या बात हुई, कौन बीमार है?
1: अम्मा मेरे घुटने कांप रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है बेटी?
0: आपके घुटने कांप रहे हैं यानी आपको केरोसिन का असर हो रहा है?
1: मैं जा रही हूँ बहू, मैं जा रही हूँ, मैं बने नहीं सकती।
0: आपको कुछ नहीं होगा माता जी। माता जी मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ।
1: नहीं बहू नहीं, डॉक्टर साहब मेरी बहू को बचाइए।
2: बचाता हूँ,
0: मेरी सासू जी को बचाइए।
2: सासू जी को? बताइए आपको क्या तकलीफ है?
1: मेरी बहू को बचाइए,
2: बहू को,
0: मेरी सासू जी को बचाइए।
2: क्या हो रहा है, कितने किसको दलाया ये बताइए।
1: इंस्पेक्टर साहब मेरा बयान लीजिए।
0: नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैंने ही इन्हें जलाने की कोशिश की है,
1: धोखा दिया, इसे जलाने की कोशिश की है।
3: इंस्पेक्टर साहब किसी ने किसी को नहीं जलाया। हाँ इन बोतलों में केरोसिन नहीं गुलाब जल है, गुलाब जल।
1: क्या?
3: सारे घर में प्यार की वर्षा हो रही है, सास और बहू।

तो ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

चित्रलोक कार्यक्रम में मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म राज 2 से। गीत संजय मासूम का है, संगीत जीत गांगुली का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए अब सुनते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना पलक मुछाल की आवाज में। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत अमाल मलिक का है।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

आइए सुनते हैं फिल्म ब्रेक के बाद का ये गाना, मोनिका डोगरा विशाल दादलानी की आवाज में, गीत प्रसून जोशी ने लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे।

0: बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। एनएबीएल प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्य तंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक

0: मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है।

0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में मजबूर फिल्म का गाना। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफी मेहनत और काफी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो जिंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफर थिएटर और टेलीविजन और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहां पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी। उस वक्त तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के जमाने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूंकि 40s की थी तो उस जमाने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीजें दर्शाने में

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, नुकसान होने से बचाओ, वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ।
3: ब्लीडिंग गम्स, स्वोलन गम्स या पायोरिया से परेशान, अपनाइए वीको वज्रदंती जो मसूड़ों को मजबूत रखता है और दांतों को स्वस्थ बनाता है। वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ वरना

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: छाया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश। तुम क्या मिले राह बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

हमारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबान रुक से जाते हैं कहीं। जब तुम्हें बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और? ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का,

हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का, नजर में कह दिया, नजर में कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा

हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का। हमेशा आँख में

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी कलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी शमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

0: यह गीत में ही अफसाना जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता, अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही

अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है और तब तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

ये अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन की वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

ये दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से ढलती जाए रात कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल

प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।